0: आज के सुविचार।
1: उसके भोजन से फल संग्रहित होता है, क्यों? इसलिए ताकि वृक्ष उसे स्वयं खा सके? नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वो भूखे जीवों में बांट सके। अब आप पूछेंगे कि इसमें वृक्ष का क्या लाभ? लाभ है, क्योंकि जो बांटता है वो मिटता नहीं। जो फल ये जीव खाते हैं वो उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास अमर हो जाती। इसलिए स्मरण रखिएगा, अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। राधे राधे।
2: भय, भय सबको होता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य। वास्तविकता में मनुष्य भय को अपने साथ लेके ही जन्म लेता है। तो इस भय से भय कैसा? यदि भय बुरा भाव होता तो क्या इसे हम अपने साथ लेके जन्म लेते हैं? वास्तविकता में भय हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए, जीवन जाने का भय आपसे स्वयं की सुरक्षा करवाने का प्रयास करता है। अपमान का भय सदाचार की ओर बढ़ाता है। किसी प्रिय को खो देने का भय उसके लिए कर्तव्य पालन करने को प्रेरित करता है। किंतु ये भय बुरा तब हो जाता है जब आप इसे अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाते। इसलिए यदि इस भय को उपयोग में लाना, आपको स्वयं इस भय के ऊपर हावी हो जाना होगा, तो तोड़ दीजिए भय की सीमाएं। अपनी आत्मा को छोड़ के किसी और के समक्ष सर मत झुकाइए। और स्मरण रखिए, जब अंधकार से डरना छोड़ दोगे तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओ। राधे राधे।
0: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: भाइयों बहनों, जहीर है ग्राम सभा में बोले बोले हैं तो फैसला मजबूत थे है। वन अधिकार सिर्फ कानून नहीं, माँ जंगल तक की जरूर बोले में रिश्तों है। जे जंगल में हमसे हैं ये उन्होंने रक्षा कर रहे हैं, तो आओ बोले ने भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा, ने जंगल में भविष्य सुरक्षित करा। बोले में आवाज विकास में असली पहचान है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था नाना अंजलि बुन हूँ था का? अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदी है ये हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा। ओ अंजलि बुन, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बूंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बूंद, आपड़े भाई बूंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा। होवे होवे जागृति बूंद, आपड़े भाई बूंदो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
1: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: अंजलि बोल गीता शुपुरु ननस की थाते पड़ा सूटा उम्मीद है कि जे वाते रही कार्यक्रम खेतीवाड़ी में बकरी पालन लेई ने ई आपरे किसान भाई बहनों ने गमी होगा। किसान भाई बहन आपने हमारो आज नो कार्यक्रम ने अन्य सलवा वाला गीत संगीत केवल आ गया इना बारे में आप प्राइस जो आली शको आपरे अना पता माते
1: होवे भाई बहनों लखी लो मारो पतु अमारो पतु है कार्यक्रम खेतीवाड़ी वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान अमारो पिन कोड नंबर है 327001 अजी वधारे जानकारी बल्ले आप अमने फोन करी शको अमर अना फोन नंबर माते अमारो फोन नंबर है 9460051234।
0: तो भाई बोन फेरी मलंगा अनस कार्यक्रम में एक ना विषय ने हाते तार हुदी
2: राम राम राम राम, राम, राम।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन को अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि बच्चों के लिए खुला मैदान क्यों जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि आज का बचपन पहले जैसा नहीं रहा।
0: जी हाँ,
1: एक समय था श्रोता साथियों जब गाँवों और मोहल्लों में बच्चे खुले मैदान में दौड़ते थे, मिट्टी में खेलते थे, पेड़ों के नीचे बैठते थे, दोस्तों के साथ कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, क्रिकेट जैसे खेल खेलते थे।
0: बिल्कुल,
1: शाम होते ही मैदान जो है वो बच्चों की हंसी आवाजों से भरे जाते थे। लेकिन आज धीरे धीरे ये दृश्य कम होते जा रहे हैं।
0: जी हाँ,
1: बच्चों का अधिक समय कशिश मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम, बंद कमरों में बीतने लगा है। शहरों में मैदान कम हो रहे हैं और गाँव में भी खाली जगह सिकुड़ती जा रही है। इसका असर कशिश केवल बच्चों के खेलने पर नहीं बल्कि उनके पूरे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर पड़ रहा है।
0: बिल्कुल,
1: खुला मैदान केवल खेलने की जगह नहीं होती है दोस्तों, बल्कि बच्चों के सीखने, बढ़ने, दोस्ती करने और जीवन को समझने की पहली पाठशाला होती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि हमारे श्रोता साथियों को गीत संगीत के साथ मनोरंजन करना अच्छा लगता है,
1: बिल्कुल,
0: और ये हमारे कार्यक्रम का दस्तूर भी है, तो क्यों ना हमारे दोस्तों को पहले यहाँ पर गीत सुनवा दे और फिर से हमारी बातचीत की हम शुरुआत करें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर।
2: चिटिकी टक टक।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और गीत से पहले हमने विषय से रूबरू आपको करा ही दिया था कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों के लिए खुला मैदान क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, अगर बात करें तो देखते हैं कि शारीरिक विकास के लिए काफी जरूरी है क्योंकि बच्चों का शरीर लगातार वर्तमान में हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल,
0: उनमें मोटापे की समस्या बढ़ रही है। ऐसे में दोस्तों उन्हें दौड़ने कूदने भागने और साथ ही ज्यादा से ज्यादा शारीरिक गतिविधियां करने की जरूरत है। खुला मैदान बच्चों को यह अवसर देगा अंजलि जी, क्योंकि जब बच्चे मैदान में खेलेंगे तब उनका शरीर मजबूत बनेगा, हड्डियां मजबूत होंगी और मांसपेशियां भी विकसित होंगी।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही शरीर में फुर्ती आएगी दोस्तों। और साथ ही नियमित रूप से खेल खेलने से बच्चों को मोटापे कमजोरी और कई बीमारियों से भी राहत मिलेगी। आज हम देखते हैं अंजलि जी कि कई बच्चे छोटी उम्र में ही थकान मोटापा और आंखों की समस्या का सामना कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में इसका एक बहुत बड़ा कारण शारीरिक गतिविधियों की कमी भी है।
1: बिल्कुल, यही कशिश अब बात आती है कि खुला मैदान बच्चों के मन को भी स्वस्थ रखता है। जब बच्चे प्रकृति के बीच खेलते हैं श्रोता साथियों, तो खुली हवा में सांस लेते हैं और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, तब उनका तनाव कम होता है।
0: बिल्कुल,
1: आज पढ़ाई का दबाव, मोबाइल की लत, अकेलापन बच्चों को मानसिक रूप से प्रभावित कर रहा है। ऐसे में श्रोता साथियों, खुला मैदान बच्चों को खुशी, स्वतंत्रता और मानसिक शांति देता है।
0: जी हाँ,
1: खेलते समय बच्चे खुलकर हंसते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और मन हल्का महसूस करता है।
0: बिल्कुल,
1: यही चीज उनके मानसिक विकास को मजबूत बनाती है। कह सकते हैं कशिश कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कि अगर बच्चों को खेलने के लिए सुरक्षित और अच्छा मैदान मिलेगा तो वे स्वाभाविक रूप से बाहर खेलने की ओर आकर्षित होंगे।
0: जी हाँ,
1: आज कई परिवार इस बात से परेशान है कि बच्चे मोबाइल छोड़ते नहीं, लेकिन जब बच्चों को दोस्तों के साथ खेलने दौड़ने और नई गतिविधियां करने का मौका मिलता है तब वे स्क्रीन से दूर होने लगते हैं। खुला मैदान बच्चों को वास्तविक दुनिया से जोड़ता है, जबकि मोबाइल उन्हें सीमित दुनिया में कैद कर देता है। कहना चाहूंगी श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि मैदान बच्चों को केवल खेलना नहीं सिखाता बल्कि जीवन जीना भी सिखाता है। जब बच्चे समूह में खेलते हैं कशिश, तब वे मिलजुल कर रहना सीखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: दूसरों की बात सुनना सीखते हैं, हार और जीत को स्वीकार करना सीखते हैं, सहयोग और टीम वर्क समझते हैं, दोस्ती और अनुशासन सीखते हैं। श्रोता साथियों, ये गुण किताबों से नहीं बल्कि अनुभव से आते हैं।
0: बिल्कुल,
1: मैदान बच्चों को समाज से जोड़ता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि खुले मैदान में खेलने से बच्चों को ढेर सारे फायदे होते हैं। अब यही अगर बात करें आत्मविश्वास की, तो हम देखते हैं कि जब बच्चा मैदान में कोई खेल सीखता है, दौड़ जीतता है या फिर टीम का हिस्सा बनता है अंजलि जी, या फिर कोई नई चीजें करता है, तब उसका आत्मविश्वास अपने आप ही बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज नहीं होते लेकिन खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मैदान ऐसे बच्चों को अपनी पहचान बनाने का अवसर देते हैं। साथियों, हम देख सकते हैं कि हर बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा होती ही है।
1: बिल्कुल,
0: और खुला मैदान उस प्रतिभा को सामने लाने में मदद करता है। साथियों,
1: जी हाँ,
0: इसी के साथ हम देखते हैं कि बच्चों का प्रकृति से जुड़ाव भी होता है, क्योंकि अंजलि जी खुला मैदान बच्चों को प्रकृति के करीब लाने के लिए अवसर देता है।
1: जी जी,
0: वे मिट्टी, पेड़ पौधे, पक्षी और मौसम को महसूस कर पाते हैं। इससे बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है। और हम कह सकते हैं कि जो बच्चे प्रकृति के बीच बड़े होते हैं वे अधिक शांत, संवेदनशील और संतुलित स्वभाव के भी होते हैं।
1: जी हाँ, तो कशिश जैसा कि कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें चल रही है हमारे श्रोता साथियों से कि बच्चों के लिए खुला मैदान क्यों जरूरी है और उसके क्या फायदे हैं। ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले कशिश हम जान पा रहे थे कि खुला मैदान बच्चों के लिए क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: जिसमें हमने जाना शारीरिक विकास के लिए जरूरी है, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मोबाइल और स्क्रीन की लत कम होती है, सामाजिक गुण विकसित होते हैं, साथ ही आत्मविश्वास बढ़ता है और प्रकृति से जुड़ा होता है।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ कहना चाहूंगी श्रोता साथियों की रचनात्मकता बढ़ती है। मैदान में बच्चे अपनी कल्पना से नए खेल बनाते हैं, नई बातें सोचते हैं, अलग अलग गतिविधियां करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इससे श्रोता साथियों उनकी रचनात्मक सोच विकसित होती है। बंद कमरे में लगातार स्क्रीन देखने से बच्चों की कल्पना शक्ति सीमित हो सकती है, जबकि खुला वातावरण उनके मन को स्वतंत्र बनाता है।
1: बिल्कुल,
0: यही बात आती है कि आज मैदान कम क्यों होते जा रहे हैं। तो श्रोता साथियों, बढ़ता शहरीकरण, शहरों में खाली जगहों पर इमारतें कॉलोनियां बन रही हैं, बच्चों के खेलने की जगह कम हो रही है। कई बच्चे सुबह से शाम तक स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क में व्यस्त रहते हैं और खेलने के लिए समय ही नहीं बचता। कुछ माता पिता बच्चों को बाहर भेजने से डरते हैं। सड़क दुर्घटना, गलत संगत, सुरक्षा की चिंता भी यह कारण है।
1: बिल्कुल,
0: अब कशिश बच्चे बाहर खेलने की बजाय मोबाइल पर गेम खेलना ज्यादा पसंद करते हैं और यह धीरे धीरे आदत बनती ही जा रही है।
1: जी हाँ,
0: हम कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से खुले मैदान कम हो रहे हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के आगे अगर बात करें कि मैदान न मिलने के क्या नुकसान हो सकते हैं, तो अगर बच्चों को खुला मैदान खेलने के लिए नहीं मिलेगा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि सबसे पहला नुकसान तो यही है कि बच्चे शारीरिक रूप से कमजोरी महसूस करेंगे, मोटापा और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाएंगी, बच्चों में चिड़चिड़ापन और तनाव भी बढ़ जाएगा अंजलि जी।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही सामाजिक दूरी और अकेलापन की समस्या भी हो सकती है और बच्चों में रचनात्मकता भी कम होगी दोस्तों, और मोबाइल की लत और ज्यादा बढ़ जाएगी। हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे बच्चे प्राकृतिक और वास्तविक जीवन से दूर होते जाएंगे, जो एक सबसे बड़ा नुकसान है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में माता पिता को कुछ उपाय अपनाने चाहिए, जैसे कि सबसे पहले माता पिता ये समझे कि बच्चों की पढ़ाई तो जरूरी है ही, लेकिन खेल भी जरूरी है।
0: जी हाँ,
1: हर दिन बच्चों को बाहर खेलने का समय मिलना चाहिए और माता पिता को खेलने का समय तय करना चाहिए अंजलि जी।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही वे खुद भी प्रेरित करें बच्चों को, जैसे कि अगर बड़े लोग खुद मोबाइल में व्यस्त रहेंगे अंजलि जी, तो बच्चे भी वहीं सीखेंगे।
0: जी हाँ,
1: इसलिए परिवार को और माता पिता को मिलकर बच्चों के साथ बाहर समय बिताना चाहिए।
0: इसी के साथ कशिश बात आती है कि कबड्डी, खो खो, रस्सी कूदना, पकड़म पकड़ाई जैसे खेल बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, इसलिए हमें स्थानीय खेलों को भी बढ़ावा देना है। गांव और मोहल्लों में बच्चों के लिए सुरक्षित खेल स्थान तैयार किए जा सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, ये केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज और प्रशासन को भी बच्चों के लिए मैदान बचाने होंगे। गांव और शहरों में खेल मैदान सुरक्षित किए जाए, स्कूलों में खेलों को महत्व दिया जाए, बच्चों के खेल कार्यक्रम आयोजित हो, पार्क और खुले स्थान बनाए जाए। जब समाज बच्चों को खेलने का अधिकार देगा, तभी स्वस्थ पीढ़ी तैयार होगी। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि खुला मैदान बच्चों के लिए केवल मनोरंजन की जगह नहीं
1: जी,
0: बल्कि उनके स्वस्थ भविष्य की नींव है। मैदान बच्चों को मजबूत शरीर, स्वस्थ मन, अच्छे संस्कार, आत्मविश्वास और सामाजिक समझ देता है। अगर हम बच्चों से मैदान छीन लेंगे कशिश, तो हम उनसे उनका स्वाभाविक बचपन छीन लेंगे।
1: बिल्कुल,
0: मोबाइल और बंद कमरे कभी भी उस खुशी, सीख और स्वतंत्रता की जगह नहीं ले सकते जो खुला मैदान देता है।
1: जी हाँ,
0: हमें यह समझना होगा कि बच्चों को केवल अच्छी पढ़ाई ही नहीं, बल्कि खुलकर जीने का अवसर भी चाहिए। हम सबको मिलकर ऐसा समाज बनाना होगा जहाँ हर बच्चे को खेलने, दौड़ने, गिरने, उठने और मुस्कुराने के लिए खुला मैदान मिल सके। यही स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित बचपन की असली पहचान है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हुई, हमने जाना कि किस प्रकार से खुले मैदान जो है वो हमारे बच्चों के लिए जरूरी है, और जब हमारे बच्चों को खुले मैदान में खेलना मिलेगा तो उनके क्या शारीरिक और मानसिक फायदे हो सकते हैं, ये भी हम जान पाए हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: अब जैसा कि बातें पूरी हो चुकी है, समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
0: बिल्कुल,
2: चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई विडी पाई चिकी चकचो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकनक हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकलक बिको चिको सिली सिली सिली गो बगड़ दुम चकड़ दुम चिकी चकचो।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी जी।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल।
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेषर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेषर को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट
2: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ श्रोता साथी, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है धुएं में उड़ती युवा पीढ़ी।
2: बिल्कुल,
1: तात्पर्य ये श्रोता साथियों कि हमारा आज का युवा देश का भविष्य माना जाता है। युवाओं की ऊर्जा, उनकी सोच, उनका उत्साह किसी भी राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।
2: बिल्कुल,
1: लेकिन जब यही युवा पीढ़ी नशे, धूम्रपान और तंबाकू के धुएं में अपनी जिंदगी को झोंकने लगे तब ये केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं रहती श्रोताओं, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के लिए चिंता का विषय बन जाता है।
2: बिल्कुल,
1: आज हम देखते हैं कशिश और मनीषा की शहरों से लेकर गांवों तक, स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक और कामकाजी युवाओं से लेकर बेरोजगार युवाओं तक धूम्रपान और नशे की लत तेजी से फैलती जा रही है। सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, वेप और अन्य तंबाकू उत्पाद युवाओं के जीवन को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं।
2: बिल्कुल
0: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम के पहले गीत के साथ हम मनोरंजन करवा दें।
2: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं धुएं में उड़ती युवा पीढ़ी को लेकर।
1: बिल्कुल
0: कशिश और जागृति जी, हम देखते हैं कि आज का समय प्रतिस्पर्धा का समय है। पढ़ाई, करियर, नौकरी और सफलता की दौड़ में युवा मानसिक दबाव को महसूस करते हैं।
1: जी जी,
0: कई बार असफलता, अकेलापन, तनाव उन्हें गलत रास्तों की ओर ले जाता है। सोशल मीडिया, फिल्मों और वेब सीरीज में धूम्रपान और शराब को आकर्षक तरीके से दिखाया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: जिससे युवा प्रभावित होते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि कुछ युवा केवल एक बार ट्राई करने के लिए सिगरेट या शराब शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि इससे वे बड़े और आधुनिक दिखाई देंगे। लेकिन श्रोता साथियों, धीरे धीरे यह आदत उसकी जिंदगी पर कब्जा कर लेती है। वे बिना नशे के खुद को अधूरा महसूस करने लगते हैं।
1: बिल्कुल आपने सही कहा मनीषा। इसी के साथ हम देखते हैं कि आज हम जैसा कि बात कर रहे हैं धुएं में उड़ती युवा पीढ़ी को लेकर, तो साथियों ये केवल एक वाक्य नहीं है बल्कि हम देखते हैं कि ये तो हमारे समाज की एक गंभीर सच्चाई है। आज जैसा कि आपने बताया कि बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे युवा साथी हैं वो कुछ गलत आदतों की ओर बढ़ रहे हैं।
0: जी हाँ,
1: और जैसा आपने बताया मनीषा कि कुछ युवा तो ऐसे हैं जो सिर्फ एक बार ट्राई करने या फिर मजे के लिए इन गलत आदतों की ओर बढ़ जाते हैं।
0: जी हाँ,
1: कुछ तो ऐसे भी हैं जागृति जी जो तनाव को कम करने या फिर फैशन के नाम पर गलत आदतों को अपना लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन श्रोता साथियों ये जो धूम्रपान जैसी आदतें हैं वो धीरे धीरे हमारे युवा साथियों की जीवन शैली बनती जा रही है। क्योंकि युवा हमारे देश की ताकत है, उनके सपने, उनकी मेहनत और उनकी ऊर्जा ही हमारा भविष्य बनाएगी।
0: जी हाँ,
1: लेकिन श्रोता साथियों जब यही युवा नशे और धुएं की गिरफ्त में आने लगते हैं तब केवल उनका स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र का भविष्य भी इससे प्रभावित होता है।
2: जी हाँ कशिश, कहा गया है कि शोक में शुरू हुआ धुआं जीवन को बना देता है शमशान। कहने का तात्पर्य ये श्रोता साथियों कि धूम्रपान का सबसे बड़ा नुकसान स्वास्थ्य पर पड़ता है। सिगरेट और तंबाकू में निकोटीन जैसे जहरीले पदार्थ होते हैं जो शरीर को अंदर से कमजोर कर देते हैं। फेफड़ों की बीमारी, कैंसर, हृदय रोग, सांस की तकलीफ और मानसिक कमजोरी जैसी गंभीर समस्या धूम्रपान से ही पैदा होती है।
1: जी हाँ,
2: हम देखते हैं कि कई युवा कम उम्र में ही थकान, तनाव और चिड़चिड़ापन महसूस करने लगते हैं।
1: जी हाँ,
2: उनका शरीर कमजोर होने लगता है और मन से आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। जो उम्र सपनों की उड़ान की

0: पढ़कर अपने माता पिता की मेहनत की कमाई बर्बाद कर देते हैं।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि धूम्रपान और नशे के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि गलत संगति। हम देखते हैं कि कई बार अच्छे बच्चे भी गलत दोस्तों की संगति में आकर नशे की आदत को अपना लेते हैं।
2: बिल्कुल,
1: दोस्तों का दबाव उन्हें मजबूर कर देता है। साथ ही हम देखते हैं कि पढ़ाई का दबाव, पारिवारिक समस्याएं, प्रेम संबंधों और असफलताओं और बेरोजगारी में भी युवा मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं।
2: बिल्कुल,
1: ऐसे में वे नशे को सहारा मान लेते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि फिल्मों और इंटरनेट पर धूम्रपान को स्टाइल के रूप में दिखाया जाता है। इससे युवाओं को लगता है कि यह सामान्य और आकर्षण बात है।
2: बिल्कुल,
1: साथ ही हम देखते हैं कि जब माता पिता बच्चों को समय नहीं देते या उनकी समस्याओं को नहीं समझते हैं, तब भी हम देखते हैं कि बच्चे ऐसी आदतों में पड़ जाते हैं।
3: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। इसी के साथ दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि कुछ युवा तो अपनी परेशानियों से भागने के लिए भी धूम्रपान या फिर नशे का सहारा लेने लगते हैं। शुरुआत छोटी होती है जागृति जी, लेकिन कब ये हमारे युवा साथियों के लिए बड़ी बन जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता।
2: जी हाँ,
3: जैसे कि दोस्तों के साथ ली हुई कोई शर्त, पार्टी में एक सिगरेट पीना बस आज के लिए और कभी नहीं पीऊंगा जैसी जो बातें होती हैं, वो धीरे धीरे हमारे युवा साथियों की आदत बन जाती है।
2: जी हाँ,
3: देखते हैं कि आज कई कॉलेजों, शहरों और यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी युवाओं के बीच धूम्रपान बढ़ता दिखाई देता है।
2: जी हाँ
3: साथियों, पहले जहाँ सिगरेट को गलत माना जाता था, वहीं कुछ लोग इसे स्टाइल और कूल दिखने का माध्यम समझने लगे हैं।
2: जी हाँ,
3: हम देख सकते हैं कि ये जो सोच है युवा साथियों में वो काफी खतरनाक है।
0: तो जैसा कि कशिश और मनीषा आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, और हमारी बातें चल रही थी कि धुएं में उड़ती युवा पीढ़ी को लेकर। श्रोता साथियों, इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे कहना चाहेंगे कि सबसे दुखद बात यह है कि धूम्रपान का प्रभाव केवल पीने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, उसके आसपास रहने वाले लोग भी इसका शिकार बनते हैं। हम देखते हैं कशिश और मनीषा की परिवार के बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी धुएं से प्रभावित होते हैं। इसे निष्क्रिय धूम्रपान कहा जाता है। कई बार छोटे बच्चे अपने घर के बड़ों को देखकर धूम्रपान की आदत सीख लेते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक गलत आदत पूरी पीढ़ी को प्रभावित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब धूम्रपान तेजी से फैल रहा है। पहले गांवों में सादगी और स्वस्थ जीवन दिखाई देता था, लेकिन अब वहां भी युवा फैशन और दिखावे में तंबाकू और सिगरेट की ओर बढ़ रहे हैं। कई युवा खेतों में काम करते हुए या दोस्तों के साथ बैठकर धूम्रपान को सामान्य मानने लगे हैं। जागरूकता की कमी और गलत संगति इस समस्या को और भी बढ़ा रही है।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि नशे की लत युवाओं की पढ़ाई और भविष्य दोनों को बर्बाद कर देती है।
0: जी हाँ,
1: शुरुआत में पढ़ाई में ध्यान कम लगता है, फिर धीरे धीरे स्कूल और कॉलेज से दूरी बढ़ने लगती है।
2: बिल्कुल,
1: ऐसे में युवा अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, उनका समय गलत आदतों, खराब संगति में बीतने लगता है। कई बार जागृति जी और कशिश हम देखते हैं कि वे नौकरी पाने में असफल हो जाते हैं।
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि उनका स्वास्थ्य और व्यवहार दोनों प्रभावित हो चुके होते हैं। जागृति जी, हम देखते हैं कि नशा व्यक्ति की मेहनत और सपनों को खत्म कर देता है।
2: बिल्कुल,
1: जो युवा देश का भविष्य बन सकते थे, वे धीरे धीरे समाज पर बोझ बनने लगते हैं।
2: बिल्कुल
3: बिल्कुल, आपने सही कहा। तो ऐसे में श्रोता साथियों, हम सभी के सामने प्रश्न ये है कि हमारी युवा साथी इस बढ़ती प्रवृत्ति से बाहर कैसे निकले। तो जैसा कि अगर हम कुछ उपायों के बारे में हमारी युवा साथियों को बताएं जागृति जी, तो जैसा कि हमने दोस्तों को पहले भी बताया कि दोस्तों की देखा देखी से भी कई बार युवा साथी इस प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे में हमारे युवा साथियों को सबसे पहले सही मित्रों का चुनाव करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
3: क्योंकि दोस्तों दोस्ती जो होती है वो जीवन बदल सकती है।
1: जी हाँ,
3: ऐसे में आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे।
0: जी हाँ,
3: साथ ही आप खेल, व्यायाम और योग को भी अपना सकते हैं, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं वो तनाव को कम करने के सबसे अच्छे तरीके माने जाते हैं।
1: बिल्कुल,
3: इससे श्रोता साथियों शरीर और मन दोनों मजबूत होते हैं। साथ ही जागृति जी, हम देखते हैं कि हर युवा के अंदर कोई ना कोई विशेषता तो होती ही है। कोई संगीत में अच्छा होता है तो कोई खेल में,
0: जी हाँ,
3: तो कोई पढ़ाई में भी अच्छा होता है। ऐसे में हमारे युवा साथियों को अपनी प्रतिभा को पहचानना चाहिए।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि ये समस्या का समाधान केवल कानून से नहीं होगा बल्कि जागरूकता और संस्कार से होगा। परिवार को बच्चों के साथ खुलकर बात करनी होगी, स्कूल और कॉलेजों में नशा विरोधी अभियान चलाने होंगे, युवाओं को खेल, कला और संगीत और सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना होगा ताकि उनका ध्यान गलत आदतों से हट सके। यदि किसी युवा को धूम्रपान की आदत हो गई हो तो उसे अपमानित करने के बजाय समझना होगा और सही मार्ग दिखाना होगा।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि मीडिया और समाज की भी बड़ी जिम्मेदारी है। हम कह सकते हैं कि युवाओं को ये समझना होगा कि उनका जीवन केवल उनका नहीं, उनसे उनके माता पिता की उम्मीदें जुड़ी हुई है, समाज की आशाएं जुड़ी हुई है, देश का भविष्य जुड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: यदि युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए मनीषा, तो वे दुनिया बदल सकते हैं। लेकिन यदि वही ऊर्जा नशे और धुएं में बर्बाद हो जाए कशिश, तो उनका भविष्य अंधकार में हो जाता है।
1: जी हाँ,
0: तो श्रोताओं आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि धूम्रपान और तंबाकू केवल एक आदत नहीं बल्कि धीरे धीरे जीवन को खत्म करने वाला जहर है। आज जरूरत है कि युवा स्वयं जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है और इसे धुएं में उड़ाने के बजाय सपनों की रोशनी में जरूर सजाइए। एक सिगरेट कुछ मिनट का दिखावा दे सकती है श्रोताओं, लेकिन वो जीवन के कई साल हमसे छीन लेती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए हर युवा को ये संकल्प लेना होगा कि वो अपने जीवन को नशे और धुओं से दूर रखेगा और एक स्वस्थ, सकारात्मक और प्रेरणादायी जीवन जिएगा। यही सच्ची आजादी है, यही असली ताकत है और यही उज्ज्वल भविष्य की पहचान है।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि हर युवा अपने जीवन के महत्व को समझना चाहिए।
2: बिल्कुल,
1: जीवन बहुत कीमती है और इसे नशे में बर्बाद करना हमारे लिए सबसे बड़ी गलती है। युवा यदि चाहे तो वो समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। उन्हें अपने माता पिता के सपनों, अपने करियर और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए।
2: बिल्कुल,
1: सफलता मेहनत से मिलती है श्रोता साथियों, नशे से नहीं। जो युवा आज सही रास्ता चुनेंगे वही कल देश के भविष्य बनेंगे।
3: बिल्कुल, आपने सही कहा। तो ऐसे में दोस्तों आपसे यही कहना चाहेंगे कि हम युवा वो नहीं जो धुएं के छल्ले बनाए, हम युवा तो वो हैं जो सपनों को आकार देते हैं। युवा वह नहीं जो खुद को नशे में खो दे साथियों, युवा तो वह है जो समाज को नई दिशा दे। याद रखे साथियों, धुआं कभी भविष्य नहीं बनाता। सिगरेट का एक छोटा सा कश धीरे धीरे सपनों की रोशनी को कम कर सकता है।
0: बिल्कुल,
3: ऐसे में युवावस्था जीवन का सबसे खूबसूरत समय है। यही समय है साथियों सीखने का, आगे बढ़ने का, सपने देखने का और समाज में बदलाव लाने का। इसे धुएं में मत उड़ाइए, अपने शरीर को मजबूत बनाइए, अपने मन को सकारात्मक बनाइए साथियों, परिवार का सहारा बनिए और समाज के लिए प्रेरणा बनिए।
0: जी हाँ
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
3: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
3: जी हाँ,

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी और ये बातें आप अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: विदा लेने से पहले आपको हमारा पता बताना चाहेंगे ताकि आज की जो भी बातें रही वो आपको कैसी लगी उसके लिए आप हमें राय सुझाव दे सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल
0: और आपके अपने दोस्त कशिश पारशर को
2: नमस्कार।

0: भाइयों बहनों, जरूर ग्राम सभा में बोले बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नहीं, माँ जंगल तक की जरूर बोले में रिश्तों है। जे जंगल में हमसे हैं ये उन्होंने रक्षा करे है। तो आओ बोला ने भागीदारी बढ़ावे, ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगल में भविष्य सुरक्षित करा। बोला ने आवाज विकास ने असली पहचान है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फागर रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जो बात रहने वाली है उसका विषय है कि संगठन क्या है, संगठन का क्या महत्व है और संगठन में क्या क्या समस्या होती है, उसका समाधान किस तरह से कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो ये सारी बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जरूर करेंगे, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है संगठन को लेकर, कि संगठन क्या है और संगठन का क्या महत्व है। तो श्रोताओं, ये सारी जानकारी देने के लिए आज अपने स्टूडियो में मानसिंह जी पधारे हुए हैं। वो हमें बताएंगे कि किस तरह से संगठन की जरूरत पड़ती है और संगठन का क्या महत्व है।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, सबसे पहले जान लेते हैं हम उन्हीं से इन ढेर सारी बातों को, फिर आगे हम हमारी बातें जारी रखेंगे।
0: बिल्कुल, नमस्कार।
2: नमस्कार,
0: आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में।
2: धन्यवाद मैम।
0: जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
2: मेरा नाम मानसिंह है नीनामा, ग्राम पंचायत सुंदराव, आनंदपुरी, बांसवाड़ा जिले का रहने वाला हूँ।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने आपका परिचय हमें बताया है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप एक संगठन का हिस्सा हैं और जिस संगठन में आप कार्य कर रहे हैं, तो आप लोगों के द्वारा बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, तो मैं यही जानना चाहूंगी कि ये संगठन बना कैसे, इसके क्या फायदे हैं और किस तरीके से ये संगठन कार्य करता है।
2: संगठन जिसे वागधारा परिवार उनके फैसिलिटेट के द्वारा धरातल पे आदिवासी समुदाय के ऐसे विषयों को जो अभी तक नहीं सोल्व कर पाए हैं, उनके लिए वहाँ पे खुद गांव लेवल पे ग्राम स्वराज समूहों का गठन किया है लोगों के द्वारा। उन्हीं लोगों के द्वारा करीबन 40 गांवों का नेतृत्व के लिए एक कृषि एवं आदिवासी स्वराज संगठन का गठन आदिवासी समुदाय के द्वारा ही बनाया गया है।
0: बिल्कुल,
2: उसी के बाद अगर देखें तो संगठन क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे छोटे मोटे कामों के लिए एकजुटता, एक रूपता बहुत अनिवार्य है। उसको ध्यान में रखते हुए आदिवासी समुदाय के हित के और प्रयास के लिए इस संगठन का गठन किया और समय समय पर सरकार के साथ संवाद करके छोटे मोटे विषय को समाधान के लिए प्रयास करता रहा।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि वागड़ अंचल जो है वहाँ पर आदिवासी जो समुदाय है उन्होंने अपने स्तर पर ही ग्राम स्वराज समूह का निर्माण किया, और ये जो समूह है वो अपने गाँव की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करता है। और जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिस पर सरकार का ध्यान बहुत कम जा पाता है, ऐसे में जो ये समूह है वो निरंतर सरकार से बातचीत करता है और गाँव की ये जो समस्याएं हैं उनका समाधान करता है। तो जैसा कि आप समूह की बात हमें कर रहे हैं, तो इस समूह में क्या क्या कार्य होते हैं और ये समूह इतने लोगों के साथ कैसे जुड़ा?
2: जैसे गांव लेवल पे हमारा ग्राम स्वराज समूह बना हुआ है, प्रत्येक मोहल्ले का महिला पुरुष जुड़ा है और गांव के अलग अलग जैसे कृषि को लेके है, उसके बाद स्कूल को लेके है, पशु को लेके है, इस तरह का काम के लिए एक जगह पे आके वो अपने विचारों को रखते हैं।
0: बिल्कुल,
2: उसी के बाद जब अगर टीकाकरण की बात कर ले पशुओं का, तो अभी वर्तमान में अगर पशु विभाग में संपर्क कर पशु टीकाकरण के लिए लोग आगे आके अपने खुद प्रयास कर रहे हैं। उसी के बाद अगर देखा जाए तो जीपी लेवल पे अगर काम हो रहा है, अगर बड़े लेवल का कोई विषय जैसे ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो अलग अलग जैसे ग्राम स्वराज समूह से आगे बढ़ के एक हमारा कृषि आदिवासी स्वराज संगठन गठन किया। जैसे ब्लॉक लेवल का कोई विषय है, उस विषय को पहल के लिए सभी 40 गांव के मेंबर इकट्ठे होके अपनी मंथली मीटिंग करते हैं। बैठक के दौरान जो अगर इस प्रकार का कोई विषय निकलता है, जैसे हैंडपंप प्रॉब्लम्स है या कहीं कहीं विद्यालय में रिक्त पद है, इस विषयों को ब्लॉक लेवल पे ले जाने के लिए संगठन प्रयासरत रहता है और समय समय पर सरकार से निवेदन करता रहा है।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान करने के लिए सरकार से बातचीत करते हैं और उनसे इन सारी चीजों की मांग करते हैं, तो क्या इन प्रयासों का लाभ आप लोगों को मिल पाता है?
2: अगर देखा जाए तो अभी कृषि एवं आदिवासी स्वराज संगठन कोबा ब्लॉक आनंदपुरी है, जिसमें ग्राम स्वराज समूहों में मासिक बैठक होती है। बैठक के दौरान कहीं न कहीं ऐसे खेती को लेके प्रॉब्लम्स आ रही, जैसे पानी कम है, विद्युत कटौती होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक लोगों के हित से ही वहां से छोटे मोटे विषय निकले, तो वो ग्राम स्वराज समूह से संगठन में लाए। संगठन के माध्यम से उन्होंने एक विचार किया, क्यों नहीं हमारे जो कृषि विभाग का जो स्प्रिंग कलर को लेके सरकार की स्कीम्स है उसको हम धरातल पर कैसे लागू करें, उसको लेके उन्होंने सरकार को निवेदन किया। उसके बाद संबंधित विभाग में जाके अधिकारियों से संवाद किया, उसके बाद वहां जाने के बाद ई मित्र वाले से संपर्क करके जितने भी किसान है जो पात्र किसानों को ऑनलाइन करने के लिए तैयार किया, तैयार करने के बाद उन परिवारों का स्वीकृति मिली, उसके बाद अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत बलेर बोदर बलेर चमना विलेज के अंदर करीबन 40 परिवारों को स्प्रिंकलर योजना से जोड़ा गया है, वो कृषि आदिवासी स्वराज संगठन के प्रयासों से।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि आपके संगठन के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उससे कई सारे लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। यही अब मैं जानना चाहूंगी कि जो संगठन है उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं और सबकी जो बातें होती हैं, संवाद जो होता है उसमें बहुत सी बार सहमति और ना सहमति भी आती होगी, तो इन सारी चीजों को आप लोग कैसे संभालते हैं, क्या इन सारी चीजों को लेकर आप लोगों की प्रक्रिया रहती है?
2: इसमें संगठन की यह प्रक्रिया है, जैसे मंथली मीटिंग होती है, मीटिंग के द्वारा अलग अलग 3-4 विषय निकल के आ जाते हैं, फिर उन्हीं में से महिला पुरुष सबकी सहमति से जैसे प्राथमिकता तय की जाती है, वो सबकी निर्णायक भूमिका के साथ। जैसे इस वक्त हमें इस सीजन के अंदर जैसे जल संरक्षण को लेके काम करना है, तो उसको लेके नरेगा विभाग में उनका ज्यादा प्रयास रहता है ताकि लोग जुड़ सके। अन्य सीजन में जैसे जब सर्दी की ऋतु में जब हमारे पानी की जरूरत पड़ती है, तो कहीं न कहीं ऐसी स्थिति में सरकार को बोले कि हमारे जैसे फवारा के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाए, तो इस तरह प्राथमिकता के अनुसार निर्णायक भूमिका में निर्णय लेके उसका समाधान कराते हैं।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आप जो संगठन की बात बता रहे हैं हमें, तो संगठन में क्या महिलाएं भी हैं शामिल?
2: बिल्कुल, इसमें जो संगठन बना हुआ हमारा 40 गांव में, उसमें 15 पुरुष है और 15 बहनें, कुल टोटल 30 महिला पुरुष
0: इसमें शामिल
2: है।
0: बिल्कुल, तो आप लोगों की जो सहमति है वो दोनों की बराबर भूमिका उसमें रहती है?
2: बिल्कुल, दोनों की बराबर रहती है।
0: मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सी बार ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं के निर्णय को, महिलाओं की बातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन जब महिलाएं संगठन का नेतृत्व करती हैं तो क्या उनके अंदर आत्मविश्वास आता है, वो अपनी बातों को बहुत सारे, जैसा कि आपने बताया कि उसमें पुरुष भी शामिल हैं, तो वहां पर रख पाती है?
2: बिल्कुल, हमारा जो वाग्धारा के द्वारा जो स्ट्रक्चर धरातल पे बने उनमें महिला पुरुष की समान भागीदारी है।
0: बिल्कुल,
2: और सबको अपने अपने मत देने का अधिकार है और अब महिला भी अपने मतों को वहां रख सकती है और उसको लास्ट तक समाधान तक पहल करने के लिए वो प्रयास करते हैं।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने संगठन के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है, तो अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये जो संगठन बना हुआ है उसकी क्या एक अलग ही विशेषता है और किस तरीके से गांव के जो लोग हैं वो इन संगठन में जुड़ने में विश्वास रखते हैं?
2: बिल्कुल रखते हैं। अगर हम देखें तो जब स्वराज को ध्यान में रखते हुए जब कृषि आदिवासी स्वराज संगठन का निर्माण हुआ, तो उनको लगता है कि स्वराज ये हमारा सब कुछ है, तो अगर सब साथ में मिलके संगठन में रह के एकजुटता के अनुसार रहकर अगर काम करते हैं तो हमारा यानी कि किसी भी विभाग या किसी भी समुदाय का साथ उधर उधर करके हम अगर काम करना चाहते हैं तो हमारे समाधान हुए हैं और उसी में हम विश्वास करते हैं।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी हो गई हैं, तो अंत में आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो श्रोता साथी हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मेरा तो एक ही संदेश है सुनने वाले सभी साथियों को कि हमारे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संगठन बने हुए, जैसे कृषि आदिवासी स्वराज संगठन, उनके माध्यम से जब दूर बैठे परिवार को जैसे फायदा नहीं मिल पा रहा है या हम नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं वो हमारे संगठन या एकजुट होके संगठन में रह के सरकार की स्कीम या समाज के हित के प्रयास या स्वराज को ध्यान में रखते हुए अपने प्रयासों को निरंतर करते रहे, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को भी इस दिशा में ले जाए और सरकार की योजना और जैसे हमारे खेती में बदलाव और नवाचारों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ पाए।
0: बिल्कुल, तो मानसिंह जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
2: धन्यवाद मैडम।
0: साथियों, जैसा कि अभी हमारे बीच में समुदाय साथी मानसिंह से जुड़े हुए थे और उनके माध्यम से हमने ढेर सारी बातों को जाना कि संगठन कैसे कार्य करता है और यह इस संगठन में कितने सदस्य हैं और गांवों की कौन कौन सी ऐसी समस्याएं होती हैं जहां पर सरकार का ध्यान नहीं जाता है, तो ये लोग वहां जाकर सरकार से राय सुझाव करते हैं और उन सारी चीजों का निदान हो पाता है। तो जागृति जी, आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagthara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदी है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: भाई ने बोनो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितली शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा, ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
0: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
3: होवे आज नाना ना कदम है, ई अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
5: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की, जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
0: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
4: हिंडो स्कूल जा, आपड़े आपड़ा भी अपना पूरा करो।
5: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है, हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
5: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: हमरो हमरो हमरो, घनी बोने पूछे हैं, जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनाओ पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
7: तो हमरो बोनो, अरे सब समस्या नो समाधान आपड़े कने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावू है, फार्म भरो, जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़वो काटो नती, जय वरे अधिकार हमरा अपनावे, जानकारी सबनु हाथ ने अधिकार, आस है समाधान में राह।
6: होवे भाइयों ने बहनो, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: भाई ने बोनो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितली शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल रह, ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा, ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
0: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
3: होवे आज नाना ना कदम है, ये अब्बा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पैराशर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जी हां साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान जो है उसकी शुरुआत आज से हो रही है, और आज कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे कि नया जीवन नई शुरुआत हम कैसे करें, क्योंकि दोस्तों जीवन में हर दिन हमारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। हर सुबह जब सूरज उगता है ना साथियों, तो हमें एक ऐसा संदेश देता है कि चाहे बीता हुआ दिन कैसा भी रहा हो, आज फिर से शुरुआत करने का मौका हमारे सामने है। आज कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हर नया दिन हमारे जीवन में उम्मीद, ऊर्जा और बदलाव का अवसर लेकर आता है। तो कार्यक्रम में बातें हमारी आपसे इस विषय पर जरूर होंगी, लेकिन शुरुआत के कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला यह गीत। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी हमारे कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। साथियों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी असफलता, परेशानी या निराशा के कारण खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। कभी कोई काम ठीक से नहीं हो पाता, कभी मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिलता, तो कभी हालात ऐसे बन जाते हैं ना साथियों कि मन उदास हो जाता है। लेकिन प्रकृति हमें हर दिन एक सुंदर संदेश देती है। जी हाँ, हर सुबह का सूरज हमें यह याद दिलाता है कि अंधेरी रात के बाद हमेशा नई सुबह आती है। साथियों, नई सुबह हमें यह अवसर देती है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, अपने अनुभवों को समझें और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ें। अब यही बात करें कि जीवन में नई शुरुआत का क्या महत्व है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है श्रोता साथियों कि हम बीते हुए समय की नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी न होने दें। अगर हम हर समय पुरानी गलतियों को या असफलताओं को याद करते रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जब हम यह सोचते हैं कि आज का दिन मेरे लिए एक नई शुरुआत है, तो हमारा मन अपने आप उत्साह और ऊर्जा से भर जाता है। नई शुरुआत का मतलब है दोस्तों, नई सोच को अपनाना, नए लक्ष्य तय करना और खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करना। क्योंकि जीवन में अधिकतर हमारे साथ यही होता है कि हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो हम पुरानी बातों को पहले सोचने लगते हैं कि पहले जब हमने ये किया था तो ये हुआ था हमारे साथ, फिर ऐसे हुआ। लेकिन साथियों, उन सारी चीजों को हमें भूल जाना है, क्योंकि तब का समय क्या था और अब जब हम नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तब समय में क्या बदलाव आया है। इन सारी चीजों पर विचार करके सकारात्मक सोच को अपनाते हुए हमें जीवन में नई शुरुआत के महत्व को समझना होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जीवन का यही दस्तूर है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, और जब उतार चढ़ाव आते हैं और उन सारी चीजों को लेकर हम परेशान रहते हैं, हम उन्हीं में गुम रहते हैं, तो हम जीवन में कभी भी उन सारी चीजों से बाहर नहीं निकल सकते। हमारे जीवन की नई शुरुआत हम नहीं कर सकते। इसलिए हमें नकारात्मक सोच को, नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमें हमारे जीवन की नई शुरुआत करनी है। खासकर ये बातें हमारे युवा साथियों के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आज के युवाओं के सामने कई चुनौतियां हैं। पढ़ाई, करियर, प्रतियोगिता, समाज की अपेक्षाएं, इन सब के बीच कई बार ऐसा लगता है ना साथियों कि रास्ता बहुत कठिन हो गया है। लेकिन युवाओं को यह समझना होगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है। अगर आज कुछ गलत हो गया है दोस्तों, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कल भी वैसा ही होगा। हर नया दिन हमें एक और मौका देता है कि हम अपने सपनों की ओर फिर से कदम बढ़ाएं। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने सपनों की ओर निरंतर प्रयास करते रहें। धैर्य और साहस के माध्यम से हम उसे अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि बातें कार्यक्रम में हमारी बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी मैं बातें आपसे अवश्य इस विषय को लेकर करती रहूंगी। लेकिन कार्यक्रम का दस्तूर है कि हम बीच बीच में मनोरंजन के माध्यम से हमारे मन को शांत करते हैं और ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो क्यों ना एक और प्यारा सा गीत मैं आप सभी को सुनवा दूं? तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी दोस्त अंजलि के साथ में।

था कि किस तरीके से हमें हमारे जीवन में नई शुरुआत के महत्व को समझना है, क्योंकि नया दिन हमारे लिए बहुत खास हो सकता है अगर हम चाहें तो। और जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि किस तरीके से युवाओं के सामने इन सारी चीजों को लेकर बहुत चुनौतियां आती हैं, यही बात करें हमारी छोटी छोटी आदतें जो होती है ना श्रोता साथियों, वो हमारे दिन को नया बनाने में मदद कर सकती हैं। वो कैसे कर सकती हैं इसको मैं आपको बताऊं। तो अगर हम चाहते हैं कि हर दिन हमारे जीवन में नई शुरुआत लेकर आए, तो हमें अपनी दिनचर्या में कुछ अच्छी आदतों को शामिल करना होगा। यानी कि सबसे पहला कार्य ही हमें ये करना है कि सुबह की शुरुआत हम सकारात्मक विचारों से करें। अक्सर दोस्तों हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें बोलते हैं कि सुबह उठते ही भगवान का स्मरण करो और भगवान से धन्यवाद कहो कि भगवान ने हमें ये सुबह दिखाई है और हमारा जो दिन है उसकी शुरुआत अच्छे से हो और अंत भी अच्छे से हो। और ये बातें अक्सर जब बड़ों के द्वारा हमें बताई जाती है तो हमें ऐसा लगता है ये क्या ऐसी बातें करते रहते हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों कि उनके जो विचार हैं, उनकी जो बातें हैं, उनके कहे गए जो अनुभव हैं, अगर उन्हें हम जीवन में अपना लेते हैं तो हमारा जो जीवन है वो बहुत अच्छा बन सकता है। सकारात्मक विचार अपनाने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें खुद से कहना है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि आज का दिन मेरे लिए अच्छा होगा। दूसरा, हमारा जो लक्ष्य हमने तय कर रखा है उसे हमें ध्यान में रखना है। अक्सर हमारे हाथों से ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है श्रोता साथियों कि हम हमारे दिन की शुरुआत लक्ष्य से नहीं करते। हमें ये लगता है कि जैसे दिन शुरू हो रहा है, जो काम हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा हो तो भी ठीक है। लेकिन अगर जब हम हमारे दिन की शुरुआत हमारे लक्ष्य के साथ करते हैं, यानी कि इस समय हमें ये कार्य करना है और इस समय ये कार्य करना है, इन सारी चीजों की रूपरेखा अगर हम एक दिन पहले बनाकर रख लेते हैं तो हमारे जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसके लिए हमें समय मिल सकता है। और जब हम छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसी के साथ हमें अपने जीवन की अच्छी बातों के लिए आभार व्यक्त करना है। जब हम यह महसूस करते हैं श्रोता साथियों कि हमारे पास कितना कुछ अच्छा है तो मन में सकारात्मकता बढ़ने लगती है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे मन में नकारात्मक विचार बहुत ज्यादा हावी होते हैं। हम अक्सर खुद को कोसने लगते हैं, हमारे पास जो होता है उसको लेकर भी हम ये सोचते हैं काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास ये होता। श्रोता साथियों आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारी इच्छाओं का अंत है ही नहीं। अगर हमारे पास सब कुछ होगा फिर भी हमें ऐसा लगेगा कि उस व्यक्ति के पास जो है काश वो मेरे पास होता। इसलिए हमारे पास जितना कुछ भी है, जो भी है या नहीं है, हमें उसमें खुश रहने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि इतिहास में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई बार नई शुरुआत की है, कई बार असफल हुए हैं, कई बार गिर गए, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को संभाला और फिर आगे बढ़े। उनकी सफलता का रहस्य भी यही था कि उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्होंने हमेशा एक ही बात को माना कि हर नया दिन एक नई संभावना लेकर आता है। अगर हम इसी बात को, इसी विचार को अपने मन में जमा लेते हैं श्रोता साथियों, तो हम हमारे जीवन की नई दिशा तय कर सकते हैं। तो साथियों कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम हर सुबह यह सोचें कि आज का दिन भी मुश्किलों से भरा होगा तो हमारा मन पहले ही हार मान लेता है। लेकिन अगर हम यह सोचें श्रोता साथियों कि आज का दिन मेरे लिए नई उम्मीद लेकर आएगा, तो वही सोच हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। जीवन हमें हर दिन एक खाली पन्ना देता है, उस पन्ने पर क्या लिखना है ये हमारे हाथों में ही होता है दोस्तों। अगर हम उस पन्ने में निराशा और डर लिखेंगे तो जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर हम उस पर उम्मीद, मेहनत, सकारात्मक सोच लिखेंगे तो वही पन्ना हमारी सफलता की कहानी बन सकता है। तो साथियों आज के कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि हर नया दिन नई शुरुआत है। बीते समय की गलतियों से सीखिए, लेकिन उन्हें अपने भविष्य पर बोझ मत बनने दीजिए। हर सुबह खुद से यही कहिए श्रोता साथियों कि आज का दिन मेरे सपनों को सच करने की दिशा में एक नया कदम है। यकीन मानिए कि जब भी सूरज उगता है वह हमें यही याद दिलाता है कि जीवन फिर से शुरू करने का मौका हमेशा मौजूद है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज की हमारी बातों को मैं यही विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि कार्यक्रम में हमारी आपसे जो बातचीत रही है वह
आपको अवश्य पसंद आई होगी। क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और प्यारे से गीत के साथ में।

बनने के लिए ऊंचा होना जरूरी नहीं, बस खुद को हर दिन जलाना पड़ता है।

साथियों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से मैं विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है, हर नया दिन एक नई शुरुआत को लेकर वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vaagdhaa.org, radio@vaagdhaa.org। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए प्यारे से विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने दोस्त अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: अरे गोरी, इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
1: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
0: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा। पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है, और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
1: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी, और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
0: ये हुई ना बात गोरी।
2: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है।
0: बिल्कुल,
1: तंबाकू से दूरी ही जीवन का सच्चा संरक्षण।
0: जी हाँ,
1: जानेंगे आज कार्यक्रम के माध्यम से तंबाकू निषेध दिवस को लेकर, क्योंकि हमारे श्रोता साथी सभी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ जो है वो सोमवार से शनिवार आता है और कल रविवार है और कल 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: आज कार्यक्रम में हम यही बातचीत करने वाले हैं कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है, इस दिवस का क्या उद्देश्य है और किस तरीके से तंबाकू हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं तंबाकू विरोधी दिवस को लेकर। अंजलि जी, हम देखते हैं कि हर वर्ष 31 मई यानी कि कल के दिन विश्व भर में विश्व तंबाकू निरोधी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों के तंबाकू के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना, उन्हें तंबाकू के सेवन से दूर रखने के लिए प्रेरित करना है।
1: बिल्कुल,
0: तंबाकू केवल एक पदार्थ नहीं है साथियों, बल्कि यह एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और आर्थिक स्थिति और समाज को नुकसान पहुंचाती है।
1: बिल्कुल मनीषा,
0: आज के समय में जब स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी माना जाता है अंजलि जी, तब तंबाकू जैसे हानिकारक लत से दूर रहना और दूसरों को भी इसके बारे में जानकारी देना हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है।
1: बिल्कुल मनीषा, कहते हैं कि बीमारी आने से पहले यदि सावधानी बरत ली जाए तो जीवन अधिक स्वस्थ और सुखी बन जाता है। तंबाकू एक ऐसी ही आदत है श्रोता साथियों, जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है।
0: बिल्कुल,
1: कई बार इसकी शुरुआत शौक से होती है लेकिन बाद में यह लत बन जाती है और फिर जीवन भर की परेशानी का कारण बनती है। जैसा कि आज हम कार्यक्रम में जान ही रहे हैं कि तंबाकू क्या है और इसके क्या नुकसान है, तो श्रोता साथियों, तंबाकू एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों का उपयोग अलग अलग प्रकार के नशीले उत्पाद बनाने में किया जाता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, हुक्का, पान मसाला जैसे कई उत्पाद तंबाकू से जुड़े हुए हैं। कई लोग सोचते हैं कि केवल सिगरेट पीना ही नुकसानदायक है, लेकिन सच ये है कि तंबाकू का हर रूप स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चाहे उसे धूम्रपान के रूप में लिया जाए या चबाकर खाया जाए, या दोनों ही स्थितियों में शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। हम देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मनीषा लोगों को तंबाकू के खतरों के प्रति जागरूक करने के लिए तंबाकू निषेध दिवस की शुरुआत की।
0: जी हाँ।
1: इस दिवस का उद्देश्य है तंबाकू से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी देना, युवाओं को नशे की शुरुआत से बचाना, तंबाकू छोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में प्रयास करना।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज सबसे अधिक चिंता का विषय है युवाओं में बढ़ती तंबाकू सेवन की प्रवृत्ति। कई युवा दोस्तों के दबाव में, फैशन, फिल्मों के प्रभाव या जिज्ञासा के कारण तंबाकू का सेवन करना शुरू कर देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें लगता है कि इससे उनका व्यक्तित्व प्रभावी बनेगा और तनाव दूर होगा। लेकिन श्रोता साथियों, वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। तंबाकू न केवल उसके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है अंजलि जी, बल्कि उसकी पढ़ाई, करियर और भविष्य को भी प्रभावित करती है। हम देखते हैं कि युवा अवस्था जीवन में सपनों को पूरा करने का समय होता है।
1: बिल्कुल,
0: यदि इस उम्र में व्यक्ति नशे की गिरफ्त में आ जाए तो उसकी ऊर्जा, क्षमता और आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, अक्सर देखा गया है कि तंबाकू की शुरुआत बहुत छोटे कारणों से होती है। कुछ लोग, जैसा कि आपने बताया कि दोस्तों के दबाव में आकर इसे आजमाते हैं, तो कुछ लोग तनाव को दूर करने के नाम पर इसकी आदत डाल लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कुछ युवाओं को लगता है कि इससे वे आधुनिक या प्रभावशाली दिखाई देंगे, लेकिन श्रोता साथियों, धीरे धीरे यही प्रयोग लत में बदल जाता है। जो व्यक्ति शुरुआत में कहता है कि वह केवल कभी कभी तंबाकू लेता है, वही कुछ समय बाद उसके बिना रह नहीं पाता। तंबाकू का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तंबाकू में निकोटिन नामक पदार्थ होता है जो नशे की लत पैदा करता है। इसके अलावा इसमें हजारों हानिकारक रसायन होते हैं जो शरीर के अलग अलग अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि कैंसर के खतरे की बात करें तो तंबाकू का सेवन करने वालों को मुंह, गले और फेफड़ों और भोजन की नली के कैंसर का खतरा बहुत अधिक हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गुटखा और कई ऐसे खाने की चीजें होती हैं जिससे मुंह का कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। यही बात करें फेफड़ों की बीमारी की मनीषा, तो श्रोता साथी, धूम्रपान करने से फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, सांस लेने में कठिनाई होती है, लगातार खांसी, फेफड़ों के संक्रमण जैसी समस्याएं पड़ जाती है। तंबाकू रक्तवाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है जिससे हृदय रोग और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। तंबाकू खाने वालों के दांत पीले हो जाते हैं, मसूड़े कमजोर पड़ जाते हैं और मुंह से दुर्गंध आने लगती है। तंबाकू शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को कमजोर करता है, जिससे लिखते हैं हम मनीषा कि व्यक्ति जो है वो जल्दी बीमार पड़ सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि तंबाकू का सेवन करने से व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचता है, उसके आसपास मौजूद लोगों को भी दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कई व्यक्ति सिगरेट या बीड़ी पीते हैं तो उसका धुआं आसपास के लोगों तक पहुंचता है। इसके परोक्ष हम देखते हैं कि धूम्रपान सेकेंडों में दूसरों को भी प्रभावित करने लगता है।
1: जी जी।
0: इस धुएं से बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। कई बार श्रोता साथियों ऐसे लोग भी होते हैं जिनके फेफड़े बीमारियों का शिकार होने लगते हैं, जिन्हें कभी धूम्रपान नहीं किया होता है।
1: जी जी। बिल्कुल मनीषा आपने सही कहा। यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि आजकल कुछ महिलाएं भी तंबाकू का सेवन करने लगी है। तंबाकू महिलाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है। गर्भावस्था में तंबाकू सेवन मां और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक है। समय से पहले प्रसव का खतरा बढ़ सकता है, बच्चे का वजन कम हो सकता है और महिलाओं में कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ सकती है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए महिलाओं को स्वयं भी तंबाकू से दूर रहना चाहिए और परिवार को भी इसके प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि तंबाकू केवल स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। ये व्यक्ति जो प्रतिदिन तंबाकू उत्पादों पर पैसा खर्च करता है
1: जी जी।
0: वह वर्ष भर में हजारों रुपए खर्च कर देता है।
1: बिल्कुल।
0: यही धन शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और परिवार की जरूरतों पर लगाया जाए श्रोता साथियों, तो हमारी आर्थिक स्थिति है वो कहीं हद तक सुधर सकती है।
1: बिल्कुल।
0: कई गरीब परिवारों में तंबाकू पर होने वाले खर्च बच्चों की पढ़ाई को बेहतर जीवन दे सकते हैं।
1: हाँ।
0: साथ ही श्रोता साथियों, जो हमारी घर की महिलाएं हैं उनके लिए भी अगर हम तंबाकू पर खर्च न कर घर के लोगों पर, बच्चों पर खर्च करें तो उससे भी हमारी आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हो सकती है।
1: बिल्कुल मनीषा आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हम बहुत अच्छे तरीके से ये जान पा रहे थे कि किस तरीके से तंबाकू के स्वास्थ्य पर ढेर सारे नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। श्रोता साथियों, बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने आसपास देखते हैं। यदि घर के बड़े सदस्य तंबाकू का सेवन करते हैं तो बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
1: बिल्कुल,
0: आजकल हम देखते हैं कि आकर्षक पैकेट और विज्ञापनों के प्रभाव से कुछ युवा तंबाकू की ओर आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन युवाओं को यह समझना होगा कि यह आदत उनके सपनों, स्वास्थ्य और भविष्य को नुकसान पहुंचा सकती है। युवा शक्ति देश की ताकत है श्रोता साथियों। यदि युवा नशे से दूर रहेंगे तो समाज भी मजबूत बनेगा। कई लोग सोचते हैं कि केवल धूम्रपान करने वालों को ही नुकसान होगा, लेकिन मनीषा ऐसा नहीं है। जब कोई व्यक्ति सिगरेट या बीड़ी पीता है तो उसके आसपास मौजूद लोग भी उस धुएं को सांस के माध्यम से अपने शरीर में लेते हैं।
1: जी हाँ,
0: इसे निष्क्रिय धूम्रपान कहा जाता है। इससे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों को विशेष रूप से नुकसान होता है। इसलिए सार्वजनिक स्थानों और घरों में धूम्रपान से बचाना बेहद आवश्यक है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि तंबाकू की लत का असर हमारे पूरे परिवार पर पड़ता है। जब परिवार का कोई सदस्य गंभीर बीमारी का शिकार होता है तो इलाज पर भारी खर्चा आता है। इससे परिवार आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से परेशान होता है।
0: बिल्कुल,
1: बच्चे अपने बड़ों की आदतों से सीखते हैं साथियों। यदि घर के बड़े तंबाकू का सेवन करते हैं तो बच्चे भी उसे अपनाएंगे और संभावनाएं और भी बढ़ जाएंगी। इसलिए परिवार के सामने एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए श्रोता साथियों, हमें बच्चों के सामने सही रहना है और तंबाकू जैसी आदतें हैं वो हमें छोड़ देनी है। साथियों, श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि बहुत कम लोग जानते हैं कि तंबाकू पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। तंबाकू की खेती एक बड़ी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग होता है। इससे मिट्टी और जल स्रोत भी अंजलि जी प्रभावित होते हैं। सिगरेट के टुकड़े, प्लास्टिक की पैकिंग पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाते हैं। लाखों लोग सिगरेट के बचे हुए हिस्से को नदियों या तालाबों में या सड़कों पर फेंक देते हैं। इससे भी श्रोता साथियों प्रदूषण बढ़ जाता है और हमारा पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि तंबाकू केवल स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। मान लीजिए श्रोता साथियों कि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 50 रुपए तंबाकू पर खर्च करता है तो एक महीने में यह राशि लगभग 1500 रुपए हो जाती है और एक महीने में यह राशि जो है वो 1500 रुपए हो जाती है और एक वर्ष में 18000 रुपए से अधिक। यही पैसा बच्चों की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और परिवार की आवश्यकताओं पर खर्च किया जा सकता है। तंबाकू का खर्च किया गया धन वास्तव में परिवार की खुशियों को कम करता है।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि तंबाकू की लत केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं होती। जब परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ता है तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। इलाज पर खर्च पड़ता है, परिवार की आय प्रभावित होती है, मानसिक तनाव बढ़ता है और कई बार हम देखते हैं मनीषा कि परिवार के छोटे छोटे सपने भी अधूरे रह जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए तंबाकू छोड़ना केवल अपनी नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि तंबाकू मुक्त समाज बनाने के लिए केवल सरकारी नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल,
1: शिक्षक विद्यार्थियों को जागरूक करें, माता पिता बच्चों को सही मार्गदर्शन दें, स्वास्थ्य कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जानकारी पहुंचाएं और सामाजिक संस्थाएं जागरूकता अभियान चलाएं।
0: बिल्कुल,
1: तो ये आदतें हैं वो काफी हद तक कम हो सकती हैं। साथ ही श्रोता साथियों, सामुदायिक रेडियो के माध्यम से जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं, इसी दिशा में हमें महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने चाहिए। रेडियो के माध्यम से अंजलि जी हम देखते हैं कि सरल भाषा में हम लोगों को समझाते हैं, तंबाकू से बचने के उपाय हम बताते हैं, उनके खिलाफ जनगणना करते हैं, कैसे जागरूक होना है, ये सब बातें बताते हैं। तो इनसे भी श्रोता साथियों आपको जानकारी लेनी है।
0: बिल्कुल मनीषा, तंबाकू छोड़ना कठिन अवश्य हो सकता है लेकिन असंभव नहीं है। अगर कोई दृढ़ संकल्प ले, यानी कि सबसे पहले स्वयं निर्णय लेना है कि अब हम तंबाकू नहीं लेंगे। कुछ लोग एकदम छोड़ सकते हैं जबकि कुछ लोग धीरे धीरे इसकी मात्रा कम कर सकते हैं। परिवार का समर्थन व्यक्ति को प्रेरणा देता है, इसलिए इसे छोड़ने के लिए परिवार का सहयोग बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: व्यायाम, योग, ध्यान और पौष्टिक भोजन हमें अपनाना है। ऐसे लोगों की संगति रखनी है जो नशे से दूर रहते हैं और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ से भी हम मदद ले सकते हैं ताकि इस विषैले पदार्थ से हम मुक्ति पा सके।
1: श्रोता साथियों, तंबाकू मुक्त समाज बनाने के लिए केवल सरकार के प्रयास ही पर्याप्त नहीं है, इसमें समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। स्कूल में जागरूकता अभियान चलाए जाए, ग्राम सभाओं में चर्चा हो, युवाओं को खेल कूद और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा जाए, नशा मुक्ति अभियान को जन आंदोलन बनाया जाए, क्योंकि जब पूरा परिवार समाज मिलकर प्रयास करेगा तब तंबाकू की समस्या पर एक प्रभाव

0: नियंत्रण संभव होगा।
1: जी हाँ,
0: छोटी सी आदत श्रोता साथियों कभी कभी पूरे जीवन की दिशा को बदल देती है। यदि हम आज तंबाकू छोड़ने का निर्णय लेते हैं मनीषा, तो आने वाले वर्षों में हम बेहतर स्वास्थ्य, अधिक ऊर्जा और खुशहाल जीवन प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए श्रोता साथियों कि तंबाकू से मिलने वाला आनंद कुछ क्षणों का होता है, लेकिन उससे होने वाला नुकसान कई वर्षों तक साथ रहता है।
1: जी हाँ।
0: जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की रक्षा करता है वही अपने परिवार और समाज की सबसे बड़ी सेवा करता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों को कहना चाहेंगी कि युवा साथियों आप देश के भविष्य हो, आपकी ऊर्जा, प्रतिभा और सपने राष्ट्र की शक्ति है। तंबाकू जैसी लत आपके सपनों को कमजोर कर सकती है। जो हाथ किताब, कलम, कंप्यूटर या खेती के आधुनिक उपकरणों या देश के निर्माण में कार्य में लग सकते हैं अंजलि जी, उन्हें तंबाकू की गिरफ्त में हमें नहीं करना चाहिए। श्रोता साथियों सच्ची शान स्वस्थ शरीर, सकारात्मक सोच और अच्छे चरित्र में है, न कि किसी नशे में। अपने मित्रों को भी तंबाकू से दूर रहने के लिए प्रेरित करें और एक स्वस्थ पीढ़ी के लिए योगदान दें और एक स्वस्थ पीढ़ी का निर्माण करें।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। एक छोटी से कहानी के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को ये बात समझाना चाहेंगे कि गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वो मेहनती था लेकिन उसे बीड़ी पीने की आदत थी। सुबह खेत जाने से पहले, दोपहर में आराम करते समय और शाम को चौपाल पर बैठते हुए वो बीड़ी जरूर पीता था। रामलाल का 10 साल का बेटा मोहन अक्सर अपने पिता को दिखता रहता। एक दिन उसने पूछा, बाबा आप ये बीड़ी क्यों पीते हो? रामलाल हंसकर बोला, बेटा बस आदत है, इससे थकान कम लगती है। मोहन चुप हो गया लेकिन उसके मन में बात बैठ गई। कुछ महीनों बाद गांव के स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगा। वहां डॉक्टर ने बच्चों को तंबाकू के नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि तंबाकू फेफड़ों को खराब करता है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है और परिवार की मेहनत की कमाई भी बर्बाद करता है। मोहन ने सारी बातें ध्यान से सुनी। उस शाम वह घर पहुंचा और अपनी गुल्लक लेकर पिता के पास आया। रामलाल ने पूछा, क्या हुआ बेटा? मोहन बोला, बाबा यह मेरी गुल्लक है, इसमें पूरे साल की बचत है। रामलाल मुस्कुराया, अच्छा तो अब क्या खरीदोगे? मोहन की आंखें भर आई। उसने कहा, कुछ नहीं खरीदूंगा, अब आप बीड़ी पीते पीते बीमार हो गए तो यह पैसे आपके इलाज में काम आएंगे। यह सुनकर रामलाल के हाथ पैर कांप गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी आदत केवल उसी को नहीं उसके पूरे परिवार को परेशान कर रही है। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया, उसे बेटे की बातें बार बार याद आती रही।
1: जी हाँ।
0: अगली सुबह उसने बीड़ी का बंडल उठाया और गांव के कूड़ेदान में फेंक दिया। बीड़ी छोड़ना आसान नहीं था, कई दिनों तक बेचैनी हुई, दोस्तों ने भी मजाक उड़ाया, लेकिन हर बार जब उसका मन डगमगाता तो उसे अपने बेटे की गुल्लक याद आ जाती। धीरे धीरे उसकी आदत छूट गई। कुछ महीनों बाद उसकी खांसी कम हो गई, सांस फूलना बंद हो गया और घर के खर्च में भी बचत होने लगी। एक दिन मोहन ने पूछा, बाबा अब बीड़ी की याद नहीं आती? रामलाल मुस्कुराया और बोला, आती है बेटा, लेकिन तुम्हारी मुस्कान उससे कहीं ज्यादा प्यारी है। उस दिन मोहन ने अपनी गुल्लक फिर पिता को दी और कहा, अब इसे इलाज के लिए नहीं, मेरी पढ़ाई के लिए रखना। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो श्रोता साथियों, तंबाकू छोड़ने का सबसे अच्छा समय कल नहीं आज ही है। एक छोटा सा निर्णय न केवल हमारी सेहत बचा सकता है बल्कि हमारे परिवार की खुशियों और भविष्य को भी सुरक्षित कर सकता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चल ही रही हैं।
0: बिल्कुल।
1: और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे, लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दी।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों हम बातें कर रहे थे तंबाकू निषेध दिवस को लेकर, अंजलि जी हम देखते हैं कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस केवल एक तारीख नहीं है बल्कि स्वास्थ्य जागरूकता और जिम्मेदारी का संदेश है।
1: बिल्कुल,
0: तंबाकू ऐसी आदत है साथियों जो धीरे धीरे जीवन की खुशियों, स्वास्थ्य, धन और भविष्य को छीन लेती है। इसके विपरीत तंबाकू मुक्त दिवस श्रोता साथियों जीवन व्यक्ति के जीवन को स्वस्थ, आत्मविश्वासी, आर्थिक सुरक्षा और सुखद पारिवारिक जीवन प्रदान करता है।
1: बिल्कुल मनीषा,
0: हम देखते हैं कि श्रोता साथियों आज आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वयं तंबाकू से दूर रहें और अपने आसपास के लोगों को भी इसके दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करें।
1: जी हाँ,
0: एक छोटा सा निर्णय किसी व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल सकता है। आइए श्रोता साथियों इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हम संकल्प लें कि स्वस्थ जीवन को अपनाएंगे, तंबाकू से दूर रहेंगे और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएंगे और दूसरों को भी हम जागरूक करेंगे और एक खुशहाल समाज का निर्माण करेंगे।
1: बिल्कुल श्रोता साथियों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस हमें केवल तंबाकू के नुकसान गिनाने के लिए नहीं बल्कि जीवन के सही मूल्यों को समझाने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो पाते हैं कि हर व्यक्ति अपने परिवार को खुश देखना चाहता है, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहता है और स्वस्थ रहकर अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, लेकिन तंबाकू जैसी आदतें इन सभी इच्छाओं के रास्ते में एक बड़ी बाधा बन जाती है। यह समझना आवश्यक है मनीषा कि तंबाकू से दूर रहना कोई त्याग नहीं बल्कि अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी निभाना है। यह स्वयं को बीमारी से बचाने, परिवार को चिंता से बचाने और आने वाली पीढ़ी को सही उदाहरण देने का एक सकारात्मक कदम है।
0: जी
1: जब घर का एक सदस्य तंबाकू छोड़ता है तो वह केवल अपनी आदत नहीं बदलता बल्कि पूरे परिवार के वातावरण को बेहतर बनाने की दिशा में काम करता है। आज आवश्यकता इस बात की है श्रोता साथियों कि हम तंबाकू को केवल एक व्यक्तिगत आदत न समझें बल्कि इसे सामाजिक चुनौती के रूप में देखें। गांव, स्कूल, परिवार, पंचायत और समाज के सभी वर्ग मिलकर जागरूकता फैलाएं। युवाओं को यह समझाया जाए कि वास्तविक ताकत किसी नशे में नहीं बल्कि स्वस्थ शरीर, स्पष्ट सोच और मजबूत आत्मविश्वास में होती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि तंबाकू के खिलाफ लड़ाई केवल एक व्यक्ति की आदत के खिलाफ नहीं होती बल्कि उन परिस्थितियों के खिलाफ भी होती है जो लोगों को उनकी ओर आकर्षित करती हैं। तंबाकू उत्पाद बनाने वाली कंपनियां अपने उत्पादों को आकर्षण, पैकिंग, अलग स्वाद और आधुनिक प्रचार के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करती है। हालांकि श्रोता साथियों कानून ने भी इनके प्रति वैज्ञानिक विज्ञापनों का प्रतिबंध लगाया है, फिर भी कई अप्रत्यक्ष तरीके से अपनाए जाते हैं जिसका प्रभाव हम देखते हैं कि युवाओं पर बहुत बुरा पड़ता है। इसलिए श्रोता साथियों आज आवश्यकता है कि लोग किसी भी आकर्षक प्रचार के पीछे छिपी वास्तविकता को समझें। चमकदार पैकेज और बड़े बड़े दावे कभी भी तंबाकू के नुकसान को कभी नहीं बता सकते। जागरूक नागरिक वही है जो किसी वस्तु का चुनाव करके चुनाव उसके दिखावे से नहीं बल्कि उसके प्रभाव को समझ कर करें।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। इसी के साथ श्रोता साथियों याद रखिए कि जीवन हमें अनमोल अवसरों, रिश्तों और जिम्मेदारियों का उपहार देता है। इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। स्वस्थ शरीर के साथ ही हम अपने परिवार, समाज और देश के विकास में बेहतर योगदान दे सकते हैं। इसलिए आज का संकल्प केवल तंबाकू छोड़ने का नहीं है बल्कि एक बेहतर, सुरक्षित और जागरूक जीवन अपनाने का होना चाहिए। हम सबको मिलकर एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास करना है जहां बच्चों को धुएं से नहीं सपनों से भरा वातावरण मिले, जहां युवाओं की पहचान नशे से नहीं उनकी प्रतिभा और मेहनत से हो और जहां हर परिवार स्वास्थ्य, खुशी और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़े। तंबाकू से दूरी, स्वास्थ्य से दोस्ती, स्वस्थ व्यक्ति, सशक्त परिवार और समृद्ध समाज की यही सबसे मजबूत नींव होती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि ग्रामीण भारत में तंबाकू का सेवन एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधित समस्या है। कई जगहों पर इसे परंपरा या सामान्य आदत के रूप में देखा जाता है।

0: कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान ही चुके हैं, यही कहना चाहेंगे कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति केवल ऊंची इमारतों, आधुनिक सुविधाओं और आर्थिक विकास से नहीं मापी जाती, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य, जागरूकता और जीवन की गुणवत्ता से मापी जाती है। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो अपने परिवार के लिए सहारा बन सकता है, समाज के लिए उपयोगी बन सकता है और अपने सपनों को साकार करने की शक्ति भी रखता है। लेकिन जब नशे जैसी आदतें जीवन में जगह बना लेती हैं मनीषा, तो धीरे धीरे ये शक्ति कमजोर होने लगती है। तंबाकू की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसके दुष्परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते। कई बार वर्षों तक व्यक्ति यह मानकर चलता रहता है कि इससे तो कोई नुकसान ही नहीं हो रहा, लेकिन भीतर ही भीतर उसका शरीर जो है वो प्रभावित हो जाता है। जब बीमारी सामने आती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। असली समझदारी इसी में है श्रोता साथियों, कि हम बीमारी का इंतजार करने के बजाय जागरूकता को अपनाएं। यह भी याद रखना चाहिए कि हर बदलाव किसी बड़े अभियान से नहीं आता, बल्कि एक छोटे से निर्णय से शुरू होता है। जिस दिन कोई व्यक्ति ये ठान लेता है श्रोता साथियों कि वह अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा, उसी दिन उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। और यह परिवर्तन केवल उसके शरीर में ही नहीं, बल्कि उसके सोचने के तरीके, आत्मविश्वास और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में भी दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि समाज में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने वर्षों तक तंबाकू का सेवन किया, लेकिन जब उन्हें इनके नुकसान का एहसास हुआ तो उन्होंने इसे छोड़ने का निर्णय लिया। शुरुआत में उन्हें कठिनाइयां हुई, पर धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। कुछ समय बाद उन्होंने महसूस किया कि उनकी सेहत पहले से बेहतर हो गई है, सांस लेने में आसानी होने लगी है और उनका खर्चा है वो भी कम हो गया है। श्रोता साथियों, इन लोगों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कोई भी बुरी आदत इतनी बड़ी नहीं होती, हम उसे चाहे तो छोड़ सकते हैं। आवश्यकता केवल मजबूत इच्छा शक्ति और सही दिशा में प्रयास की होती है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि तंबाकू को छोड़ना बहुत कठिन काम है, लेकिन हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। यदि कोई व्यक्ति आज यह तय कर ले कि वह अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा और सही निर्णय से काम करेगा और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएगा, तो श्रोता साथी वो किसी भी आदत को छोड़ सकता है। एक दिन, एक सप्ताह, फिर एक महीने तक तंबाकू से दूर रहें, धीरे धीरे नई और अच्छी आदतें बनाई जा सकती हैं। इसलिए श्रोता साथियों, बदलाव की शुरुआत आज और अभी से शुरू करें।
0: बिल्कुल मनीषा, आज की पीढ़ी के सामने अनेक अवसर हैं। शिक्षा, तकनीक, खेल, रोजगार और नवाचार के नए रास्ते खुल रहे हैं। ऐसे समय में युवाओं को ऐसी किसी भी आदत से दूर रहना चाहिए जो उनकी क्षमता को कम करे। देश का भविष्य और जागरूक युवाओं के हाथों में ही है, इसलिए उन्हें सही दिशा देना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। श्रोता साथियों, इस अवसर पर हमें केवल तंबाकू का विरोध नहीं करना है, बल्कि स्वास्थ्य को एक जन आंदोलन बनाने का संकल्प लेना है। अपने घर में, अपने गांव में, अपने समुदाय में ऐसे संस्कृति विकसित करनी है जहाँ स्वस्थ जीवन शैली गर्व का विषय बने, जहाँ लोग नशे से नहीं अपने अच्छे कार्यों, मेहनत और सकारात्मक सोच से पहचाने जाएं। इसलिए इतना ही कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि जीवन एक अनमोल अवसर है, इसे ऐसी आदतों में व्यर्थ न गवाएं जो धीरे धीरे खुशियां छीन लेती है। अपने शरीर का सम्मान कीजिए, अपने परिवार के प्रेम का सम्मान कीजिए, उस भविष्य का सम्मान कीजिए श्रोता साथियों जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आज एक ऐसा निर्णय लें जो आने वाले वर्षों में हमें गर्व, स्वास्थ्य और संतोष दे, क्योंकि जब स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है तभी सपने सुरक्षित रहते हैं, रिश्ते सुरक्षित रहते हैं और जीवन के मुस्कान भी सुरक्षित रहती है। स्वस्थ रहें श्रोता साथियों, जागरूक रहें और जीवन को उसकी पूरी सुंदरता के साथ जीने का प्रयास करें।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता हम बता दें।
0: बिल्कुल, तो साथियों लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org www.radiomitra.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
2: नमस्कार।
1: साथी दोस्तों, आप सभी को छोड़े चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वागत करती हूं दोस्तों आप सभी का फिर से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम कार्यक्रम आपकी फरमाइश को लेकर रोजाना हाजिर हो जाते हैं और सिलसिला हमारा आपके साथ बना रहता है सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप एसएमएस करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं और आप भी अपने फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना क्या है श्रोता साथियों, आपको लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहां से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं वहां का आपको नाम लिखना है, साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। तो जैसा कि दोस्तों सुबह के 11 बज चुके हैं और फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, मैं यहीं बढ़ना चाहूंगी पहली फरमाइश की ओर। साथियों पहली फरमाइश हमारे बीच आई है राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है शागिर्द, गीत के बोल हैं दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानूं रे। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश कुमार जी। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी हैं जो पसंद करते हैं इसी गीत को। साथियों बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं चुन्नीलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, सज्जन शाह, हेमंत नामदेव जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं जो सुनना चाहते हैं इस गीत को, आपको बताना चाहूंगी दोस्त जुड़ रहे हैं पंडरपुर से हैं जाखिल मुलाणी, सुबिया सलमान, निल मुमताज, दिलशाद नशीर भी, बानो भी, बादशाह मुलाणी जी। रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से हैं प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशाज सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़के जी। इसी बीच हमारे और भी दोस्त बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत, दर्श राजपूत। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगले फरमाइश के गीत की ओर। अगले फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी, मस्तानपुरा से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों खलनायक। गीत के बोल हैं पालके में होके सवार चले रे। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में। मस्तानपुरना जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा चेतन, सुलोचना भगत और भी दोस्त हमारे बीच जुड़ रहे हैं। टिटिरी बागपत से आसिफ अली खान, मोमिन अनाज, मुस्कान, सादिक अली खान, सारिक अली खान। खरगोन मध्य प्रदेश से तिलोक चंद्र वर्मा, बागवत वर्मा, सीमा, अभिषेक जी, अमित जी, सचिन, समराज, आर्यन और आरोही ऐशिका, श्वेता वर्मा जी। बागपत से जुड़ना चाह रहे हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन और भुवनेश्वरी देवी जी। दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी जी और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी, इसी बीच हमारे और भी दोस्त हैं। नवाशहर से सुरेंद्र सांधु, अनिता सांधु, रोहित सांधु, रितेश जी, शिक्षा सांधु, प्रतीक्षा सांधु और मेक्स जी। कश्मीर से फैजरा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, क्वासिरुद्दीन। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं पालकी में होके सवार चले रहे। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगले फरमाइश का हमारा गीत आया है नेपानगर मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों कुदरत। गीत के बोल हैं, तूने और रंगीले कैसा जादू किया। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में, आपको नाम बताना चाहूंगी। जुड़ रहे हैं नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर्ष शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि जी शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन जी शाह, राजनीजा शाह और सुषमा कपूर जी। नादेड़ महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे जी। मजनू का टिल्ला से है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, कांशा मलिक, माही मलिक। हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, कमरजीत कौर। कोका बिलाई से हैं उत्तम सिंह जंगेल, मोरज जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल, नंदिनी जंगेल। सुकरी कला से अमित शकुन, आरुषिका और आदित्यंजलि जंगेल। जवान नगर दुर्ग से जुड़ रहे आरसी कामड़े, करुणा मिन्ना, अश्विल, विपुल कामड़े जी। इसी बीच हमारे साथी जुड़ रहे हैं और भी, गंजू द्वारा से हैं शमशुल कमर राही, शाइन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु अंसारी, कलीम अंसारी जी। इसी बीच हमारे और भी दोस्त जुड़ रहे हैं, आपको नाम बताना चाहूंगी। दोस्तों छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, प्रहलाद खूबचंद्र सिंह वर्मा जी। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं महाराज कीर्तनपुर पुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी निशा, तुलसी दिशा गोस्वामी जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, तूने और रंगीले कैसा जादू किया। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में, और मनोरंजन कीजिए साथियों प्यारे प्यारे फरमाइश के गीतों के साथ में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था फरमाइश का, तूने ओ रंगीले के साथ जादू किया, पिया पिया बोले मतवाला जिया। इसी प्यारे से फरमाइश के गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं साथियों अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है शादुल शहर राजस्थान से,

फिल्म का नाम है श्रोता साथी और राजा गीत के बोल हैं किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ में। आपको बताना चाहूंगी शादुल शाह राजस्थान से हैं, राम कुमार रेवाल चंद्रकला रेवाड़। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से गुणवंत शिवास, करुणा शिवास, आयुषिवास, विवेक शिवास, बेबी आशीष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमू, मानस राज। बोड़खेरा पित्रामल से हैं विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पंवार, दीक्षा कुश मुणत जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी श्रोता साथी हैं, जुड़ रहे हैं खंडवा से राजेश सेन, शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सुरेखा सेन। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी श्रोता साथी हमारे जो पसंद करते हैं इसी गीत को। आपको बताना चाहूंगी अजित कसाना, मया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना और लदावली मुरादाबाद से ये श्रोता साथी हमारे जुड़ रहे हैं। इसी बीच और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं, जफराबाद से सुधाकर राजे जादव, प्रशांत राजे जादव, प्रथमेश देशमुख, प्रणय देशमुख, सर्वत देशमुख, सानवी देशमुख और कल्पना देशमुख। तो आइए साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत है हांडी खेड़ा जिला सिरसा से। फिल्म का नाम है, श्रोता साथियों बताना चाहूंगी, सड़क। गीत के बोल है, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं राधेश्याम शर्मा, इंद्र शर्मा, सार्थक शर्मा, सचिन शर्मा, रोहित शर्मा। इसी बीच हमारे और भी दोस्त महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे, शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े, सपिल धाड़े, अजय खिरोड़कर। श्रोता साथी जुड़ रहे नेहरू चौक पैठन से, सुरेश यादव, अनिता यादव, आरती प्रसाद, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव। जुड़ना चाह रहे हैं सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलिस डिकेस्टो जी। भोपालगढ़ राजस्थान से है धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं सिंधी बुजुर्ग से है शुभम वड़तकर, शुभम वड़तकर और पुन्नू और किशोर वड़तकर। मलोट से जुड़ना चाह रहे हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीतरनी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी हैं जो पसंद करते हैं इसी गीत को। नाम बताना चाहूंगी साथियों, मलयान सरधना मेरठ से हैं, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन। अम्बाला हरियाणा से है रवि कुमार, राहुल रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरसिप्त सिंह, राहुल गुरकीरत जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू टप्पू जी। अदर नगर अक्सर हरिद्वार से हैं ताजबंद अंसारी, गुलाम शाहिर राही और महराज जहां। तो आइए साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, जैसा कि फरमाइश का बहुत ही प्यारा सा गीत था, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच चाहिए साथियों बीरशहर महाराष्ट्र से, नंदकिशोर गटे, संगीता गटे, साक्षी गटे, जयश्री मतरे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टहुल, बीपी खुलते जी। इसी बीच और भी साथी जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, लोखीलाल वर्मा जी जुड़ना चाह रहे हैं। कोलगांव कुंभार गली से हैं पांडु चंदन, उषा रानी, प्रतीक्षा अभिषेक, सार्थक प्रथमेश, संतोष और पांडुरंग कुमार जी। बिलार राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान। और भी दोस्त मलकापुर से हैं नारायण इंगले, आशीष मोहेरकर। महाराष्ट्र से पीएस नवाडकर, निमल नवाडकर, विशाल नवाकर, सुपानता एडे जी। इसी बीच हमारे और भी साथी जुड़ रहे हैं कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसीम अंसारी, नोएड अंसारी, आसना मोहम्मद केफ अंसारी जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं। एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा, तन्वी बोट। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, राह में उनसे मुलाकात हो गई। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है देहरादून से। फिल्म का नाम है आप आए बाहर आई। गीत के बोल है मुझे तेरी मोहब्बत का शरारा। इसी गीत के फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं जजर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया, दादी गीत भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं, लोरमी चिचड़ी छत्तीसगढ़ से हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा पुष्पराज, ऋषभ मरावी जी। श्रीरामपुर से जुड़ना चाह रहे हैं अशोक कुमार, अविका जीविका, सानू कुम्भार, अर्चना कुमार। पुनावले से अजय सोनवने, करिश्मा, अविका, शायसा सोनवने। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। गंजुडवारा से हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, बेगम अंसारी, अयान अंसारी, उस्मान अंसारी, यासिन हाशमी, शमशुल कमर राही। जुड़ना चाह रहे हैं और भी दोस्त बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राय, चेतन मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल, रचिता, किशोर, इधान खुराना जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं पोटा कला दुर्ग। गीत के बोल हैं साथियों मुझे तेरी मोहब्बत का शरारा। तब तक आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों, जैसा कि कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता कशिश पाराशर के साथ में, अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपनी दोस्त मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडरिया छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है दूध का कर्ज। गीत के बोल ही शुरू हो रही है प्रेम कहानी। इस गीत की फरमाइश करते हैं उत्तम सिंह भगेल, रुक्मणी भगेल, साहिल जी भगेल, भारती जी भगेल। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं नवाशहर पंजाब से, गंगदीप थांडी, तृप्ता कुमारी थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, डॉक्टर प्रशांत थांडी, डॉक्टर प्रियम थांडी, बीवी मामिका वानी जी थांडी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं वासिम महाराष्ट्र से, मास्टर विठल सुरेशी, सुषमा सुरेशी, परिधि सुरेशी, मायराजी सुरेशी। इस गीत के अनुरोध करता है पलेरा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष जी विश्वकर्मा। बुलंदशहर से जुड़ रहे हैं मोहम्मद सहीद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, सुरुद्दीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अभांची अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य गणरूप जुड़ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जलालाबाद वेस्ट सी। फिल्म का नाम है आशा, गीत के बोल है शीशा हो या दिल। इस गीत की फरमाइश करते हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे, बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र ननसोड़ी, ज्योति नरसोड़ी, आकांक्षा जी और आकाश जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं राजनंदा गांव छत्तीसगढ़ से बबलू शाहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बीबी, आराध्या जी शाहू। इस गीत की अनुरोध करता है गजर द्वारा गणेशपुर से फिराजुद्दीन हुसैन, अलकमर जहां, सिफा सिमरन, मोहम्मद अल्फिक, सेवाजी शेख। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ये शीशा हो या दिल। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है धनोरी तेलीवाला सी। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल हैं एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस गीत की फरमाइश करते हैं निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बीबी आलिया, आयुन बाबू और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रही है। राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चना ताई गुड़ाने, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभाजी गुड़ाने और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, नितिन कुमार वर्मा और सोनम जी वर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इज़ार, नरगिस जी खातून और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। डाबकी रोड अकोला से शशिला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही एक मुलाकात जरूरी है सनम। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाकर रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दुलापुर उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, गीत के बोल ही चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। इस गीत की फरमाइश करता है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाश पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं पठरपुर सिटी से प्रशांत सिंधे, सुनता सिंधे, यशराज सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़के जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाली खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शारिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा और खेड़ा परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे महाराष्ट्र से रूपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रतीजी संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत की बोली है चुरा के दिल मेरा। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागट रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में है।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पूना जंक्शन मस्तानपुरा से। फिल्म का नाम है खुदा गवाह, गीत के बोल हैं तू मुझे कबूल। इस गीत की फरमाइश करता है अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतना भगत, सुलोचना जी भगत, चेतन जी भगत। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से देवकरण तामुरिया, अजय तुषार, मास्टर अली अबीर जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, हर्ष जी आहूजा। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं चचेरी छत्तीसगढ़ से शिव शंकर कोलाम, संतोषी कोलाम, संजय कोलाम, संध्या कोलाम, शिवम जी कोलाम। इस गीत के अनुरोध करते हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, सनिता पुष्पा श्रीवास, अंजु योगिता श्रीवास, रंजन शाह, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे गंजुडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी, राधा नामदेव जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं तू मुझे कबूल। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिहार कॉलोनी दिल्ली से। फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मेली। गीत के बोल ही सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। इस गीत की फरमाइश करता है तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, रिधानजी खुराना। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मोहल्ला मदनपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार, विषाद त्रंबाजी, निखिल कुमार, नैतिक कुमार और पुष्पांजलि। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, श्रीमती अंकुश राघव जी गुप्ता। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, सलमा मोहम्मद, रेहान मोहम्मद,

फैजाब जी मोहम्मद, महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं प्रवीण, योगिता, प्रियाली और पार्थ जी, और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से, नीतीश कुमार देवांग, दुर्गा प्रसाद, पाठाराम जी, तनुज और ईशान जी। इस गीत की अनुरोध करता है जाखोत राजस्थान, शंभुदयाल खटक, विमला जी खटक, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमारी जी खटक, और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं शिवाजी नगर देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंद्राताई खोबरखेड़े, दीपाली स्वराज और सुकन्या तनुज जी। छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं डोमेंद्र तेनाज, गंगेश्वरी चंचल, कामलेश और माहिर जी। खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं बेबी सालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, बेबी जिकरा डावर, बेबी आयशा खत्री। धर्मपुर से जुड़ रहे हैं मुशा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जाकिर जी खत्री। अमरावती से जुड़ना चाह रहे हैं हीरामन शेंडी, शीला देवी शेंडी, सिद्धार्थ जी शेंडी। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ पलारी सी प्रकाश वर्मा, प्रियम वर्मा, निखिल जी वर्मा और यश जी वर्मा। भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रही हैं सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, बीबी वेदई जोशी, बीबी हंसिका जी जोशी, कुमारी अंकिता जोशी। मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं श्रीमती गिजेवंती केवट जी। खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ रही हैं अब्दुल गफार डावर जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रही हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मिका, सृष्टि बन्नी, आरुष शौर्या, दिनेश जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से चंद्रलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, संजीविता श्रीवास, रंजन शाह, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागट रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। और दोस्तों यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

तो भाइयों बनो, आ तो हती हमारी आज की सभा। हमें आशा करा कि आज की सभा में प्रसारित थावा वारा कार्यक्रम गीत संगीत आपने पसंद आई हुआ होगा। आपने हमारा आज ना कार्यक्रम केवा लाग्या, इन्हें बल्ले आप हमने राय सुझाव आली सको हमारे अणा पता माते। हमारू पतु है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्टू कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारो पिन कोड नंबर है 3270001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप मने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते। अमारो फोन नंबर है 9460051234। तो भाइयों बोनो, आ तो हती अमारी आज नी सभा। बीजी सभा में फेरी मुलाकात थागा, तारुदी आपनी साथी अंजलि नु राम राम।

0: आज के सुविचार।
1: उसके भोजन से फल संग्रहित होता है, क्यों? इसलिए ताकि वृक्ष उसे स्वयं खा सके? नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वो भूखे जीवों में बांट सके। अब आप पूछेंगे कि इसमें वृक्ष का क्या लाभ? लाभ है, क्योंकि जो बांटता है वो मिटता नहीं। जो फल ये जीव खाते हैं वो उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास अमर हो जाती है। इसलिए स्मरण रखिएगा, अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। राधे राधे। भय, भय सबको होता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य। वास्तविकता में मनुष्य भय को अपने साथ लेके ही जन्म लेता है। तो इस भय से भय कैसा? यदि भय बुरा भाव होता तो क्या इसे हम अपने साथ लेके जन्म लेते हैं? वास्तविकता में भय हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए, जीवन जाने का भय आपसे स्वयं की सुरक्षा करवाने का प्रयास करता है। अपमान का भय सदाचार की ओर बढ़ाता है। किसी प्रिय को खो देने का भय उसके लिए कर्तव्य पालन करने को प्रेरित करता है। किंतु ये भय बुरा तब हो जाता है जब आप इसे अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाते। इसलिए यदि इस भय को उपयोग में लाना, आपको स्वयं इस भय के ऊपर हावी हो जाना होगा, तो तोड़ दीजिए भय की सीमाएं। अपनी आत्मा को छोड़ के किसी और के समक्ष सर मत झुकाइए। और स्मरण रखिए, जब अंधकार से डरना छोड़ दोगे तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओ। राधे राधे।
0: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट
2: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेषर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है धुएं में उड़ती युवा पीढ़ी।
2: बिल्कुल
1: तात्पर्य ये श्रोता साथियों कि हमारा आज का युवा देश का भविष्य माना जाता है। युवाओं की ऊर्जा, उनकी सोच, उनका उत्साह किसी भी राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।
2: बिल्कुल।
1: लेकिन जब यही युवा पीढ़ी नशे, धूम्रपान और तंबाकू के धुएं में अपनी जिंदगी को झोंकने लगे, तब ये केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं रहती श्रोताओं, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के लिए चिंता का विषय बन जाता है।
2: बिल्कुल।
1: आज हम देखते हैं कशिश और मनीषा की शहरों से लेकर गांवों तक, स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक और कामकाजी युवाओं से लेकर बेरोजगार युवाओं तक धूम्रपान और नशे की लत तेजी से फैलती जा रही है। सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, वेप और अन्य तंबाकू उत्पाद युवाओं के जीवन को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं।
2: बिल्कुल
0: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम के पहले गीत के साथ हम मनोरंजन करवा दें।
2: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं धुएं में उड़ती युवा पीढ़ी को लेकर।
1: बिल्कुल
0: कशिश और जागृति जी, हम देखते हैं कि आज का समय प्रतिस्पर्धा का समय है। पढ़ाई, करियर, नौकरी और सफलता की दौड़ में युवा मानसिक दबाव को महसूस करते हैं।
1: जी जी,
0: कई बार असफलता, अकेलापन, तनाव उन्हें गलत रास्तों की ओर ले जाता है। सोशल मीडिया, फिल्मों और वेब सीरीज में धूम्रपान और शराब को आकर्षक तरीके से दिखाया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: जिससे युवा प्रभावित होते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि कुछ युवा केवल एक बार ट्राई करने के लिए सिगरेट या शराब शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि इससे वे बड़े और आधुनिक दिखाई देंगे। लेकिन श्रोता साथियों, धीरे धीरे यह आदत उसकी जिंदगी पर कब्जा कर लेती है। वे बिना नशे के खुद को अधूरा महसूस करने लगते हैं।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। इसी के साथ हम देखते हैं कि आज हम जैसा कि बात कर रहे हैं धुएं में उड़ती युवा पीढ़ी को लेकर, तो साथियों ये केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि हम देखते हैं कि ये तो हमारे समाज की एक गंभीर सच्चाई है। आज जैसा कि आपने बताया कि बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे युवा साथी हैं वो कुछ गलत आदतों की ओर बढ़ रहे हैं।
0: जी हाँ,
1: और जैसा आपने बताया मनीषा कि कुछ युवा तो ऐसे हैं जो सिर्फ एक बार ट्राई करने या फिर मजे के लिए इन गलत आदतों की ओर बढ़ जाते हैं।
0: जी हाँ,
1: कुछ तो ऐसे भी हैं जागृति जी जो तनाव को कम करने या फिर फैशन के नाम पर गलत आदतों को अपना लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन श्रोता साथियों, ये जो धूम्रपान जैसी आदतें हैं वो धीरे धीरे हमारे युवा साथियों की जीवन शैली बनती जा रही है। क्योंकि युवा हमारे देश की ताकत है, उनके सपने, उनकी मेहनत और उनकी ऊर्जा ही हमारा भविष्य बनाएगी।
0: जी हाँ,
1: लेकिन श्रोता साथियों, जब यही युवा नशे और धुएं की गिरफ्त में आने लगते हैं, तब केवल उनका स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र का भविष्य भी इससे प्रभावित होता है।
2: जी हाँ कशिश, कहा गया है कि शोक में शुरू हुआ धुआं जीवन को बना देता है शमशान। कहने का तात्पर्य ये श्रोता साथियों कि धूम्रपान का सबसे बड़ा नुकसान स्वास्थ्य पर पड़ता है। सिगरेट और तंबाकू में निकोटीन जैसे जहरीले पदार्थ होते हैं जो शरीर को अंदर से कमजोर कर देते हैं। फेफड़ों की बीमारी, कैंसर, हृदय रोग, सांस की तकलीफ और मानसिक कमजोरी जैसी गंभीर समस्या धूम्रपान से ही पैदा होती है।
1: जी हाँ,
2: हम देखते हैं कि कई युवा कम उम्र में ही थकान, तनाव और चिड़चिड़ापन महसूस करने लगते हैं।
1: जी हाँ,
2: उनका शरीर कमजोर होने लगता है और मन से आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। जो उम्र सपनों की उड़ान की होती है उसी उम्र में कई युवा अस्पतालों के चक्कर लगाने लगते हैं। मनीषा और कशिश, हम देखते हैं कि धूम्रपान केवल शरीर को नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति को भी नुकसान पहुंचाता है।
1: बिल्कुल,
2: कई युवा रोजाना सिगरेट और तंबाकू पर सैकड़ों रुपए खर्च करते हैं। धीरे धीरे ये खर्च इतना बढ़ जाता है श्रोताओं की उनकी जेब खाली होने लगती है। यदि वही पैसा शिक्षा, किताबों, कौशल या परिवार पर खर्च किया जाए तो श्रोता साथियों जीवन हमारा बेहतर बन सकता है। लेकिन नशे की आदत इंसान को समझदारी से दूर कर देती है। गरीब परिवारों के कई युवा भी इस लत में पड़कर अपने माता पिता की मेहनत की कमाई बर्बाद कर देते हैं।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि धूम्रपान और नशे के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि गलत संगति, हम देखते हैं कि कई बार अच्छे बच्चे भी गलत दोस्तों की संगति में आकर नशे की आदत को अपना लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: दोस्तों का दबाव उन्हें मजबूर कर देता है। साथ ही हम देखते हैं कि पढ़ाई का दबाव, पारिवारिक समस्याएं, प्रेम संबंधों और असफलता और बेरोजगारी में भी युवा मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में वे नशे को सहारा मान लेते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि फिल्मों और इंटरनेट पर धूम्रपान को स्टाइल के रूप में दिखाया जाता है। इससे युवाओं को लगता है कि यह सामान्य और आकर्षण बात है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही हम देखते हैं कि जब माता पिता बच्चों को समय नहीं देते या उनकी समस्याओं को नहीं समझते हैं, तब भी हम देखते हैं कि बच्चे ऐसी आदतों में पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। इसी के साथ दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि कुछ युवा तो अपनी परेशानियों से भागने के लिए भी धूम्रपान या फिर नशे का सहारा लेने लगते हैं। शुरुआत छोटी होती है जागृति जी, लेकिन कब ये हमारे युवा साथियों के लिए बड़ी बन जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि दोस्तों के साथ ली हुई कोई शर्त, पार्टी में एक सिगरेट पीना बस आज के लिए और कभी नहीं पीऊंगा जैसी जो बातें होती हैं, वो धीरे धीरे हमारे युवा साथियों की आदत बन जाती है।
0: जी हाँ,
1: देखते हैं कि आज कई कॉलेजों, शहरों और यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी युवाओं के बीच धूम्रपान बढ़ता दिखाई देता है।
0: जी हाँ
1: साथियों, पहले जहाँ सिगरेट को गलत माना जाता था, वहीं कुछ लोग इसे स्टाइल और कूल दिखने का माध्यम समझने लगे हैं।
0: जी हाँ,
1: हम देख सकते हैं कि ये जो सोच है युवा साथियों में वो काफी खतरनाक है।
2: तो जैसा कि कशिश और मनीषा आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: लेकिन अब वहाँ भी युवा फैशन और दिखावे में तंबाकू और सिगरेट की ओर बढ़ रहे हैं।
1: हाँ।
0: कई युवा खेतों में काम करते हुए या दोस्तों के साथ बैठकर धूम्रपान को सामान्य मानने लगे हैं। जागरूकता की कमी और गलत संगति इस समस्या को और भी बढ़ा रही है।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि नशे की लत युवाओं की पढ़ाई और भविष्य दोनों को बर्बाद कर देती है।
0: जी हाँ,
1: शुरुआत में पढ़ाई में ध्यान कम लगता है, फिर धीरे धीरे स्कूल और कॉलेज से दूरी बढ़ने लगती है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में युवा अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, उनका समय गलत आदतों खराब संगति में बीतने लगता है। कई बार जागृति जी और कशिश हम देखते हैं कि वे नौकरी पाने में असफल हो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि उनका स्वास्थ्य और व्यवहार दोनों प्रभावित हो चुके होते हैं। जागृति जी, हम देखते हैं कि नशा व्यक्ति की मेहनत और सपनों को खत्म कर देता है।
0: बिल्कुल,
1: जो युवा देश का भविष्य बन सकते थे वे धीरे धीरे समाज पर बोझ बनने लगते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। तो ऐसे में श्रोता साथियों, हम सभी के सामने प्रश्न ये है कि हमारी युवा साथी इस बढ़ती प्रवृत्ति से बाहर कैसे निकले। तो जैसा कि अगर हम कुछ उपायों के बारे में हमारी युवा साथियों को बताएं जागृति जी, तो जैसा कि हमने दोस्तों को पहले भी बताया कि दोस्तों की देखा देखी से भी कई बार युवा साथी इस प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे में हमारे युवा साथियों को सबसे पहले सही मित्रों का चुनाव करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि दोस्तों दोस्ती जो होती है वो जीवन बदल सकती है।
1: जी हाँ,
0: ऐसे में आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें।
1: जी हाँ,
0: साथ ही आप खेल व्यायाम और योग को भी अपना सकते हैं, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं वो तनाव को कम करने के सबसे अच्छे तरीके माने जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इससे श्रोता साथियों शरीर और मन दोनों मजबूत होते हैं। साथ ही जागृति जी, हम देखते हैं कि हर युवा के अंदर कोई ना कोई विशेषता तो होती ही है। कोई संगीत में अच्छा होता है तो कोई खेल में,
1: जी हाँ,
0: तो कोई पढ़ाई में भी अच्छा होता है। ऐसे में हमारे युवा साथियों को अपनी प्रतिभा को पहचानना चाहिए।
2: बिल्कुल कशिश, क्योंकि ये समस्या का समाधान केवल कानून से नहीं होगा बल्कि जागरूकता और संस्कार से होगा। परिवार को बच्चों के साथ खुलकर बात करनी होगी, स्कूल और कॉलेजों में नशा विरोधी अभियान चलाने होंगे, युवाओं को खेल कला और संगीत और सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना होगा ताकि उनका ध्यान गलत आदतों से हट सके। यदि किसी युवा को धूम्रपान की आदत हो गई हो तो उसे अपमानित करने के बजाय समझना होगा और सही मार्ग दिखाना होगा।
1: बिल्कुल
2: श्रोताओं, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि मीडिया और समाज की भी बड़ी जिम्मेदारी है। हम कह सकते हैं कि युवाओं को समझना होगा कि उनका जीवन केवल उनका नहीं, उनसे उनके माता पिता की उम्मीदें जुड़ी हुई है, समाज की आशाएं जुड़ी हुई है, देश का भविष्य जुड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल,
2: यदि युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए मनीषा, तो वे दुनिया बदल सकते हैं। लेकिन यदि वही ऊर्जा नशे और धुएं में बर्बाद हो जाए कशिश, तो उनका भविष्य अंधकार में हो जाता है।
1: जी हाँ,
2: तो श्रोताओं आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि धूम्रपान और तंबाकू केवल एक आदत नहीं बल्कि धीरे धीरे जीवन को खत्म करने वाला जहर है। आज जरूरत है कि युवा स्वयं जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करे।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है और इसे धुएं में उड़ाने के बजाय सपनों की रोशनी में जरूर सजाइए। एक सिगरेट कुछ मिनट का दिखावा दे सकती है श्रोताओं, लेकिन वो जीवन के कई साल हमसे छीन लेती है।
1: बिल्कुल,
2: इसलिए हर युवा को ये संकल्प लेना होगा कि वो अपने जीवन को नशे और धुओं से दूर रखेगा और एक स्वस्थ सकारात्मक और प्रेरणादायी जीवन जिएगा। यही सच्ची आजादी है, यही असली ताकत है और यही उज्ज्वल भविष्य की पहचान है।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि हर युवा अपने जीवन के महत्व को समझना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: जीवन बहुत कीमती है और इसे नशे में बर्बाद करना हमारे लिए सबसे बड़ी गलती है। युवा यदि चाहे तो वो समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। उन्हें अपने माता पिता के सपनों, अपने करियर और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: सफलता मेहनत से मिलती है श्रोता साथियों, नशे से नहीं। जो युवा आज सही रास्ता चुनेंगे वही कल देश के भविष्य बनेंगे।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा। तो ऐसे में दोस्तों आपसे यही कहना चाहेंगे कि हम युवा वो नहीं जो धुएं के छल्ले बनाए, हम युवा तो वो हैं जो सपनों को आकार देते हैं। युवा वह नहीं जो खुद को नशे में खो दे साथियों, युवा तो वह है जो समाज को नई दिशा दे। याद रखे साथियों, धुआं कभी भविष्य नहीं बनाता। सिगरेट का एक छोटा सा कश धीरे धीरे सपनों की रोशनी को कम कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में युवावस्था जीवन का सबसे खूबसूरत समय है। यही समय है साथियों सीखने का, आगे बढ़ने का, सपने देखने का और समाज में बदलाव लाने का। इसे धुएं में मत उड़ाइए, अपने शरीर को मजबूत बनाइए, अपने मन को सकारात्मक बनाइए साथियों, परिवार का सहारा बनिए और समाज के लिए प्रेरणा बनिए।
2: जी हाँ
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी और ये बातें आप अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: विदा लेने से पहले आपको हमारा पता बताना चाहेंगे ताकि आज की जो भी बातें रही वो आपको कैसी लगी, उसके लिए आप हमें राय सुझाव दे सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल
0: और आपके अपने दोस्त कशिश पारशर को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन को अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि बच्चों के लिए खुला मैदान क्यों जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि आज का बचपन पहले जैसा नहीं रहा।
0: जी हाँ,
1: एक समय था श्रोता साथियों जब गाँवों और मोहल्लों में बच्चे खुले मैदान में दौड़ते थे, मिट्टी में खेलते थे, पेड़ों के नीचे बैठते थे, दोस्तों के साथ कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, क्रिकेट जैसे खेल खेलते थे।
0: बिल्कुल,
1: शाम होते ही मैदान जो है वो बच्चों की हंसी आवाजों से भरे जाते थे। लेकिन आज धीरे धीरे ये दृश्य कम होते जा रहे हैं।
0: जी हाँ,
1: अब बच्चों का अधिक समय कशिश मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम, बंद कमरों में बीतने लगा है। शहरों में मैदान कम हो रहे हैं और गाँव में भी खाली जगह सिकुड़ती जा रही है। इसका असर कशिश केवल बच्चों के खेलने पर नहीं बल्कि उनके पूरे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर पड़ रहा है।
0: बिल्कुल,
1: खुला मैदान केवल खेलने की जगह नहीं होती है दोस्तों, बल्कि बच्चों के सीखने, बढ़ने, दोस्ती करने और जीवन को समझने की पहली पाठशाला होती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि हमारे श्रोता साथियों को गीत संगीत के साथ मनोरंजन करना अच्छा लगता है,
1: बिल्कुल,
0: और ये हमारे कार्यक्रम का दस्तूर भी है, तो क्यों ना हमारे दोस्तों को पहले यहाँ पर गीत सुनवा दे और फिर से हमारी बातचीत की हम शुरुआत करें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
3: चिक तक तक चिक तक चिक तक तक चिक।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और गीत से पहले हमने विषय से रूबरू आपको करा ही दिया था कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों के लिए खुला मैदान क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, अगर बात करें तो देखते हैं कि शारीरिक विकास के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि बच्चों का शरीर लगातार वर्तमान में हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल,
0: उनमें मोटापे की समस्या बढ़ रही है। ऐसे में दोस्तों उन्हें दौड़ने कूदने भागने और साथ ही ज्यादा से ज्यादा शारीरिक गतिविधियां करने की जरूरत है। खुला मैदान बच्चों को यह अवसर देगा अंजलि जी, क्योंकि जब बच्चे मैदान में खेलेंगे तब उनका शरीर मजबूत बनेगा, हड्डियां मजबूत होंगी और मांसपेशियां भी विकसित होंगी।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही शरीर में फुर्ती आएगी दोस्तों। और साथ ही नियमित रूप से खेल खेलने से बच्चों को मोटापे कमजोरी और कई बीमारियों से भी राहत मिलेगी। आज हम देखते हैं अंजलि जी कि कई बच्चे छोटी उम्र में ही थकान मोटापा और आंखों की समस्या का सामना कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में इसका एक बहुत बड़ा कारण शारीरिक गतिविधियों की कमी भी है।
1: बिल्कुल, यही कशिश अब बात आती है कि खुला मैदान बच्चों के मन को भी स्वस्थ रखता है। जब बच्चे प्रकृति के बीच खेलते हैं श्रोता साथियों, तो खुली हवा में सांस लेते हैं और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, तब उनका तनाव कम होता है।
0: बिल्कुल,
1: आज पढ़ाई का दबाव, मोबाइल की लत, अकेलापन बच्चों को मानसिक रूप से प्रभावित कर रहा है। ऐसे में श्रोता साथियों, खुला मैदान बच्चों को खुशी, स्वतंत्रता और मानसिक शांति देता है।
0: जी हाँ,
1: खेलते समय बच्चे खुलकर हंसते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और मन हल्का महसूस करता है।
0: बिल्कुल,
1: यही चीज उनके मानसिक विकास को मजबूत बनाती है। कह सकते हैं कशिश कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कि अगर बच्चों को खेलने के लिए सुरक्षित और अच्छा मैदान मिलेगा तो वे स्वाभाविक रूप से बाहर खेलने की ओर आकर्षित होंगे।
0: जी हाँ,
1: आज कई परिवार इस बात से परेशान है कि बच्चे मोबाइल छोड़ते नहीं, लेकिन जब बच्चों को दोस्तों के साथ खेलने दौड़ने और नई गतिविधियां करने का मौका मिलता है तब वे स्क्रीन से दूर होने लगते हैं। खुला मैदान बच्चों को वास्तविक दुनिया से जोड़ता है, जबकि मोबाइल उन्हें सीमित दुनिया में कैद कर देता है। कहना चाहूंगी श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि मैदान बच्चों को केवल खेलना नहीं सिखाता बल्कि जीवन जीना भी सिखाता है। जब बच्चे समूह में खेलते हैं कशिश, तब वे मिलजुल कर रहना सीखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: दूसरों की बात सुनना सीखते हैं, हार और जीत को स्वीकार करना सीखते हैं, सहयोग और टीम वर्क समझते हैं, दोस्ती और अनुशासन सीखते हैं। श्रोता साथियों, ये गुण किताबों से नहीं बल्कि अनुभव से आते हैं।
0: बिल्कुल,
1: मैदान बच्चों को समाज से जोड़ता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि खुले मैदान में खेलने से बच्चों को ढेर सारे फायदे होते हैं। अब यही अगर बात करें आत्मविश्वास की, तो हम देखते हैं कि जब बच्चा मैदान में कोई खेल सीखता है, दौड़ जीतता है या फिर टीम का हिस्सा बनता है अंजलि जी, या फिर कोई नई चीजें करता है, तब उसका आत्मविश्वास अपने आप ही बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज नहीं होते लेकिन खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मैदान ऐसे बच्चों को अपनी पहचान बनाने का अवसर देते हैं। साथियों, हम देख सकते हैं कि हर बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा होती ही है।
1: बिल्कुल,
0: और खुला मैदान उस प्रतिभा को सामने लाने में मदद करता है। साथियों,
1: जी हाँ,
0: इसी के साथ हम देखते हैं कि बच्चों का प्रकृति से जुड़ाव भी होता है, क्योंकि अंजलि जी खुला मैदान बच्चों को प्रकृति के करीब लाने के लिए अवसर देता है।
1: जी जी,
0: वे मिट्टी, पेड़ पौधे, पक्षी और मौसम को महसूस कर पाते हैं। इससे बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है, और हम कह सकते हैं कि जो बच्चे प्रकृति के बीच बड़े होते हैं वे अधिक शांत, संवेदनशील और संतुलित स्वभाव के भी होते हैं।
1: जी हाँ, तो कशिश, जैसा कि कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें चल रही है हमारे श्रोता साथियों से कि बच्चों के लिए खुला मैदान क्यों जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं। ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले कशिश हम जान पा रहे थे कि खुला मैदान बच्चों के लिए क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: जिसमें हमने जाना शारीरिक विकास के लिए जरूरी है, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, मोबाइल और स्क्रीन की लत कम होती है, सामाजिक गुण विकसित होते हैं, साथ ही आत्मविश्वास बढ़ता है और प्रकृति से जुड़ा होता है।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ कहना चाहूंगी श्रोता साथियों की रचनात्मकता बढ़ती है। मैदान में बच्चे अपनी कल्पना से नए खेल बनाते हैं, नई बातें सोचते हैं, अलग अलग गतिविधियां करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इससे श्रोता साथियों उनकी रचनात्मक सोच विकसित होती है। बंद कमरे में लगातार स्क्रीन देखने से बच्चों की कल्पना शक्ति सीमित हो सकती है, जबकि खुला वातावरण उनके मन को स्वतंत्र बनाता है।
1: बिल्कुल,
0: यही बात आती है कि आज मैदान कम क्यों होते जा रहे हैं। तो श्रोता साथियों, बढ़ता शहरीकरण, शहरों में खाली जगहों पर इमारतें कॉलोनियां बन रही हैं, बच्चों के खेलने की जगह कम हो रही है। कई बच्चे सुबह से शाम तक स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क में व्यस्त रहते हैं और खेलने के लिए समय ही नहीं बचता। कुछ माता पिता बच्चों को बाहर भेजने से डरते हैं, सड़क दुर्घटना, गलत संगत, सुरक्षा की चिंता भी यह कारण है।
1: बिल्कुल,
0: अब कशिश बच्चे बाहर खेलने के बजाय मोबाइल पर गेम खेलना ज्यादा पसंद करते हैं और यह धीरे धीरे आदत बनती ही जा रही है।
1: जी हाँ,
0: हम कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से खुले मैदान कम हो रहे हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के आगे अगर बात करें कि मैदान न मिलने के क्या नुकसान हो सकते हैं, तो अगर बच्चों को खुला मैदान खेलने के लिए नहीं मिलेगा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि सबसे पहला नुकसान तो यही है कि बच्चे शारीरिक रूप से कमजोरी महसूस करेंगे, मोटापा और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाएंगी, बच्चों में चिड़चिड़ापन और तनाव भी बढ़ जाएगा अंजलि जी।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही सामाजिक दूरी और अकेलापन की समस्या भी हो सकती है और बच्चों में रचनात्मकता भी कम होगी दोस्तों, और मोबाइल की लत और ज्यादा बढ़ जाएगी। हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे बच्चे प्राकृतिक और वास्तविक जीवन से दूर होते जाएंगे, जो एक सबसे बड़ा नुकसान है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में माता पिता को कुछ उपाय अपनाने चाहिए, जैसे कि सबसे पहले माता पिता ये समझे कि बच्चों की पढ़ाई तो जरूरी है ही, लेकिन खेल भी जरूरी है।
0: जी हाँ,
1: हर दिन बच्चों को बाहर खेलने का समय मिलना चाहिए और माता पिता को खेलने का समय तय करना चाहिए अंजलि जी।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही वे खुद भी प्रेरित करें बच्चों को, जैसे कि अगर बड़े लोग खुद मोबाइल में व्यस्त रहेंगे अंजलि जी, तो बच्चे भी वहीं सीखेंगे।
0: जी हाँ,
1: इसलिए परिवार को और माता पिता को मिलकर बच्चों के साथ बाहर समय बिताना चाहिए।
0: इसी के साथ कशिश बात आती है कि कबड्डी, खो खो, रस्सी कूदना, पकड़म पकड़ाई जैसे खेल बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, इसलिए हमें स्थानीय खेलों को भी बढ़ावा देना है। गांव और मोहल्लों में बच्चों के लिए सुरक्षित खेल स्थान तैयार किए जा सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, यह केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज और प्रशासन को भी बच्चों के लिए मैदान बचाने होंगे। गांव और शहरों में खेल मैदान सुरक्षित किए जाए, स्कूलों में खेलों को महत्व दिया जाए, बच्चों के खेल कार्यक्रम आयोजित हों, पार्क और खुले स्थान बनाए जाएं। जब समाज बच्चों को खेलने का अधिकार देगा, तभी स्वस्थ पीढ़ी तैयार होगी। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि खुला मैदान बच्चों के लिए केवल मनोरंजन की जगह नहीं
1: जी,
0: बल्कि उनके स्वस्थ भविष्य की नींव है। मैदान बच्चों को मजबूत शरीर, स्वस्थ मन, अच्छे संस्कार, आत्मविश्वास और सामाजिक समझ देता है। अगर हम बच्चों से मैदान छीन लेंगे कशिश, तो हम उनसे उनका स्वाभाविक बचपन छीन लेंगे।
1: बिल्कुल,
0: मोबाइल और बंद कमरे कभी भी उस खुशी, सीख और स्वतंत्रता की जगह नहीं ले सकते जो खुला मैदान देता है।
1: जी हाँ,
0: हमें यह समझना होगा कि बच्चों को केवल अच्छी पढ़ाई ही नहीं, बल्कि खुलकर जीने का अवसर भी चाहिए। हम सबको मिलकर ऐसा समाज बनाना होगा जहाँ हर बच्चे को खेलने, दौड़ने, गिरने, उठने और मुस्कुराने के लिए खुला मैदान मिल सके। यही स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित बचपन की असली पहचान है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हुई, हमने जाना कि किस प्रकार से खुले मैदान जो है वो हमारे बच्चों के लिए जरूरी है, और जब हमारे बच्चों को खुले मैदान में खेलना मिलेगा तो उनके क्या शारीरिक और मानसिक फायदे हो सकते हैं, ये भी हम जान पाए हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: अब जैसा कि बातें पूरी हो चुकी है, समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
0: बिल्कुल,
2: चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई विडी पाई चिकी चकचो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकनक हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिली सिली सिली गो बगड़ दुम चकड़ दुम चिकी चकचो।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी जी।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल।
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेषर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेषर को।
1: नमस्कार।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: अरे गोरी, इतने सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
5: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
4: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए, इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
5: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
4: ये हुई ना बात गोरी।
6: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित।

0: कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोनों ने आपनी बोन अंजलि ने आपनी बोन जागृति नु राम राम। भाई बोनो आप हमरी रहे हो आप सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणे मन स्वागत कर रहा हूँ अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में।
1: हवे भाई बोन लेने हाजिर थी गया कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने नाराज कार्यक्रम ने माध्यम थे कि हमें बातें कर रहा हूँ खेती पशुपालन ने ग्रामीण विकास ने लेने। तो आज भी आप एक विषय जुड़ाई रू है आज नो विषय है बकरी पालन अपने हरते करव है ने एनु महत्व है। आप देखो कि आज ना समय में खेती ने हाथे हाथे पशुपालन किसान नी आय वधारवा नु सब तक मोटू मजबूत माध्यम बनी चुक्यू अंजलि बोन ने जई वरे वात आवे कि कम खर्च ने कम जगह माते जल्दी थकी आपने लाभ मिली जाए ते एवा में आपने हूँ करी शका तो ये है कि बकरी पालन सब तक अगाड़ी रहे। तो एटले कह कि छोटी सी बकरी घणो मोटू कमाल करे है ने गरीब किसान निया ढाल भी रहे। तो आज जाना बकरी पालन हरते कर हरते शुरू करी शक ने आनी नस्ल आपने ने केवी जुवे ने हूँ सावधानी आपने राखवी जुवे। तो आ सब बातें आपने आज ना कार्यक्रम ने माध्यम ते की करंगा पण शुरुआत में हमरा गीत ने मोरे कर आपड़ी वाते
0: होवे। तो भाई बोनू आप हमरते रहजो आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: कि हर किसान अगर आपने खेत नहाते बकरी भी पालेगा तो घर की आमदनी भी बढ़ेगा, सूरनी बढ़ाई भी आसान थी जागा, परिवार आत्मनिर्भर बनेगा ने गांव खुशहाल रहेगा। तो भाई बहन सफलता कारिक भी एक दाड़ा में आपने नती मिलती। आपने देखा कि परबाते पशु ने चारो आल इनकी देखभाल कर बीमारी तक की बचाव ना छोटी छोटी मेहनत एक दाड़े मोटू परिणाम बनी ने हामे आवे है। तो याद रखो कि धरती कारे भी मेहनत करो बारा ने खाली हाथ नती लोटावती। जे किसान पसीनो बहावे है ई आपड़े सपना नी फसल भी काटे है।
1: होवे चक्रतिबुन आपे सही कीधु तणी प्रकार थकी आज कार्यक्रम में आपड़ी घणी असल बातें रही है कि आपड़े जे किसान भाई बुन है ई आपड़ी अतिरिक्त आय बल्ले हरते बकरी पालन करी शके आना हूँ फायदा है ने कई कई वातानु एणाने ध्यान राखवू है। वाते घणा आकानी थई गई है ने हवे टाइम थई गयो है आपणे अणस कार्यक्रम तकी सूटा पड़वानो। तो सूटा तो पड़ पण साथे पहले हमरी लाइक और गीत ने मोरे पड़ा सूटा
0: होवे।

0: अंजलि बोन गीता इशु पुरु ननस की थाते पड़ा सूटा उम्मीद है कि जे वाते रही कार्यक्रम खेती बाड़ी में बकरी पालन लई ने ई आपरे किसान भाई बोन ने गमी होगा। किसान भाई बोन आपने हमारो आज नो कार्यक्रम ने अन्य सलवा वाला गीत संगीत केवल आ गया इना बारे में प्राइस जो आली शको आपरे अना पता माते
1: होवे भाई बोन लखी लो मारो पतु अमारो पतु है कार्यक्रम खेती बाड़ी वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। अमारो पिन कोड नंबर है 3200001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप अमने फोन करी शको अमर अना फोन नंबर माते अमारो फोन नंबर है 9460051234।
0: तो भाई बोन फेरी मलंगा अनस कार्यक्रम में एक ना विषय ने हाते तार हुदी
1: राम राम
0: राम राम, राम, राम।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जो बात रहने वाली है उसका विषय है कि संगठन क्या है, संगठन का क्या महत्व है और संगठन में क्या क्या समस्या होती है, उसका समाधान किस तरह से कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो ये सारी बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जरूर करेंगे, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है संगठन को लेकर, कि संगठन क्या है और संगठन का क्या महत्व है। तो श्रोताओं, ये सारी जानकारी देने के लिए आज अपने स्टूडियो में मानसिंह जी पधारे हुए हैं। वो हमें बताएंगे कि किस तरह से संगठन की जरूरत पड़ती है और संगठन का क्या महत्व है।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, सबसे पहले जान लेते हैं हम उन्हीं से इन ढेर सारी बातों को, फिर आगे हम हमारी बातें जारी रखेंगे।
0: बिल्कुल, नमस्कार।
2: नमस्कार,
0: आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में।
2: धन्यवाद मैम।
0: जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
2: मेरा नाम मानसिंह है नीनामा, ग्राम पंचायत सुंदराव, आनंदपुरी, बांसवाड़ा जिले का रहने वाला हूँ।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने आपका परिचय हमें बताया है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप एक संगठन का हिस्सा हैं और जिस संगठन में आप कार्य कर रहे हैं, तो आप लोगों के द्वारा बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, तो मैं यही जानना चाहूंगी कि ये संगठन बना कैसे, इसके क्या फायदे हैं और किस तरीके से ये संगठन कार्य करता है।
2: संगठन जिसे वागधारा परिवार उनके फैसिलिटेट के द्वारा धरातल पे आदिवासी समुदाय के ऐसे विषयों को जो अभी तक नहीं सोल्व कर पाए हैं, उनके लिए वहाँ पे खुद गांव लेवल पे ग्राम स्वराज समूहों का गठन किया है लोगों के द्वारा। उन्हीं लोगों के द्वारा करीबन 40 गांवों का नेतृत्व के लिए एक कृषि एवं आदिवासी स्वराज संगठन का गठन आदिवासी समुदाय के द्वारा ही बनाया गया है।
0: बिल्कुल,
2: उसी के बाद अगर देखें तो संगठन क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे छोटे मोटे कामों के लिए एकजुटता, एक रूपता बहुत अनिवार्य है। उसको ध्यान में रखते हुए आदिवासी समुदाय के हित के और प्रयास के लिए इस संगठन का गठन किया और समय समय पर सरकार के साथ संवाद करके छोटे मोटे विषय को समाधान के लिए प्रयास करता रहा।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि वागड़ अंचल जो है, वहाँ पर आदिवासी जो समुदाय है, उन्होंने अपने स्तर पर ही ग्राम स्वराज समूह का निर्माण किया, और ये जो समूह है वो अपने गाँव की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करता है। और जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिस पर सरकार का ध्यान बहुत कम जा पाता है, ऐसे में जो ये समूह है वो निरंतर सरकार से बातचीत करता है और गाँव की ये जो समस्याएं हैं उनका समाधान करता है। तो जैसा कि आप समूह की बात हमें कर रहे हैं, तो इस समूह में क्या क्या कार्य होते हैं और ये समूह इतने लोगों के साथ कैसे जुड़ा?
2: जैसे गांव लेवल पे हमारा ग्राम स्वराज समूह बना हुआ है, प्रत्येक मोहल्ले का महिला पुरुष जुड़ा है और गांव के अलग अलग जैसे कृषि को लेके है, उसके बाद स्कूल को लेके है, पशु को लेके है, इस तरह का काम के लिए एक जगह पे आके वो अपने विचारों को रखते हैं।
0: बिल्कुल,
2: उसी के बाद जब अगर टीकाकरण की बात कर ले पशुओं का, तो अभी वर्तमान में अगर पशु विभाग में संपर्क कर पशु टीकाकरण के लिए लोग आगे आके अपने खुद प्रयास कर रहे हैं। उसी के बाद अगर देखा जाए तो जीपी लेवल पे अगर काम हो रहा है, अगर बड़े लेवल का कोई विषय जैसे ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो अलग अलग जैसे ग्राम स्वराज समूह से आगे बढ़ के एक हमारा कृषि एवं आदिवासी स्वराज संगठन गठन किया। जैसे ब्लॉक लेवल का कोई विषय है, उस विषय को पहल के लिए सभी 40 गांव के मेंबर इकट्ठे होकर अपनी मंथली मीटिंग करते हैं। बैठक के दौरान जो अगर इस प्रकार का कोई विषय निकलता है, जैसे हैंडपंप प्रॉब्लम्स है या कहीं कहीं विद्यालय में रिक्त पद है, इस विषयों को ब्लॉक लेवल पे ले जाने के लिए संगठन प्रयासरत रहता है और समय समय पर सरकार से निवेदन करता रहा है।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान करने के लिए सरकार से बातचीत करते हैं और उनसे इन सारी चीजों की मांग करते हैं, तो क्या इन प्रयासों का लाभ आप लोगों को मिल पाता है?
2: अगर देखा जाए तो अभी कृषि एवं आदिवासी स्वराज संगठन कोबा ब्लॉक आनंदपुरी है, जिसमें ग्राम स्वराज समूहों में मासिक बैठक होती है। बैठक के दौरान कहीं न कहीं ऐसे खेती को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही, जैसे पानी कम है, विद्युत कटौती होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक लोगों के हित से ही वहां से छोटे मोटे विषय निकले, तो वो ग्राम स्वराज समूह से संगठन में लाए। संगठन के माध्यम से उन्होंने एक विचार किया, क्यों नहीं हमारे जो कृषि विभाग का जो स्प्रिंग कलर को लेके सरकार की स्कीम्स है उसको हम धरातल पर कैसे लागू करें, उसको लेके उन्होंने सरकार को निवेदन किया। उसके बाद संबंधित विभाग में जाके अधिकारियों से संवाद किया, उसके बाद वहां जाने के बाद ई मित्र वाले से संपर्क करके जितने भी किसान हैं, जो पात्र किसानों को ऑनलाइन करने के लिए तैयार किया। तैयार करने के बाद उन परिवारों का स्वीकृति मिली, उसके बाद अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत ब्लेर बोदर ब्लेर चमना विलेज के अंदर करीबन 40 परिवारों को स्प्रिंकलर योजना से जोड़ा गया है, वो कृषि आदिवासी स्वराज संगठन के प्रयासों से।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि आपके संगठन के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उससे कई सारे लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। यही अब मैं जानना चाहूंगी कि जो संगठन है उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं और सबकी जो बातें होती है, संवाद जो होता है उसमें बहुत सी बार सहमति और ना सहमति भी आती होगी, तो इन सारी चीजों को आप लोग कैसे संभालते हैं, क्या इन सारी चीजों को लेकर आप लोगों की प्रक्रिया रहती है?
2: इसमें संगठन की यह प्रक्रिया है, जैसे मंथली मीटिंग होती है, मीटिंग के द्वारा अलग अलग 3-4 विषय निकल के आ जाते हैं, फिर उन्हीं में से महिला पुरुष सबकी सहमति से जैसे प्राथमिकता तय की जाती है, वो सबकी निर्णायक भूमिका के साथ। जैसे इस वक्त हमें इस सीजन के अंदर जैसे जल संरक्षण को लेके काम करना है, तो उसको लेके नरेगा विभाग में उनका ज्यादा प्रयास रहता है ताकि लोग जुड़ सके। अन्य सीजन में जैसे जब सर्दी की ऋतु में जब हमारे पानी की जरूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में सरकार को बोले कि हमारे जैसे फवारा के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाए, तो इस तरह प्राथमिकता के अनुसार निर्णायक भूमिका में निर्णय लेके उसका समाधान कराते हैं।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आप जो संगठन की बात बता रहे हैं हमें, तो संगठन में क्या महिलाएं भी हैं शामिल?
2: बिल्कुल, इसमें जो संगठन बना हुआ हमारा 40 गांव में, इसमें 15 पुरुष और 15 बहनें, कुल टोटल 30 महिला पुरुष
1: इसमें शामिल
2: है।
1: बिल्कुल, तो आप लोगों की जो सहमति है वो दोनों की बराबर भूमिका उसमें रहती है?
2: बिल्कुल, दोनों की बराबर रहती है।
1: मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सी बार ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं के निर्णय को, महिलाओं की बातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन जब महिलाएं संगठन का नेतृत्व करती हैं तो क्या उनके अंदर आत्मविश्वास आता है, वो अपनी बातों को बहुत सारे, जैसा कि आपने बताया कि उसमें पुरुष भी शामिल है, तो वहां पर रख पाती है?
2: बिल्कुल, हमारा जो वाकधारा के द्वारा जो स्ट्रक्चर धरातल पे बने उनमें महिला पुरुष की समान भागीदारी है।
1: बिल्कुल,
2: और सबको अपने अपने मत देने का अधिकार है और अब महिला भी अपने मतों को वहां रख सकती है और उसको लास्ट तक समाधान तक पहल करने के लिए वो प्रयास करते हैं।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने संगठन के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है, तो अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये जो संगठन बना हुआ है उसकी क्या एक अलग ही विशेषता है और किस तरीके से गांव के जो लोग हैं वो इन संगठन में जुड़ने में विश्वास रखते हैं?
2: बिल्कुल रखते हैं। अगर हम देखें तो जब स्वराज को ध्यान में रखते हुए जब कृषि आदिवासी स्वराज संगठन का निर्माण हुआ, तो उनको लगता है कि स्वराज ये हमारा सब कुछ है, तो अगर सब साथ में मिलके संगठन में रह के एकजुटता के अनुसार रहकर अगर काम करते हैं तो हमारा यानी कि किसी भी विभाग या किसी भी समुदाय का साथ उधर उधर करके हम अगर काम करना चाहते हैं तो हमारे समाधान हुए हैं, उसी में हम विश्वास करते हैं।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी हो गई हैं, तो अंत में आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो श्रोता साथी हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मेरा तो एक ही संदेश है सुनने वाले सभी साथियों को कि हमारे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संगठन बने हुए, जैसे कृषि आदिवासी स्वराज संगठन, उनके माध्यम से जब दूर बैठे परिवार को जैसे फायदा नहीं मिल पा रहा है या हम नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं वो हमारे संगठन या एकजुट होके संगठन में रह के सरकार की स्कीम या समाज के हित के प्रयास या स्वराज को ध्यान में रखते हुए अपने प्रयासों को निरंतर करते रहे, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को भी इस दिशा में ले जाए और सरकार की योजना और जैसे हमारे खेती में बदलाव और नवाचारों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ पाए।
1: बिल्कुल, तो मानसिंह जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
2: धन्यवाद मैडम।
1: साथियों, जैसा कि अभी हमारे बीच में समुदाय साथी मानसिंह से जुड़े हुए थे और उनके माध्यम से हमने ढेर सारी बातों को जाना कि संगठन कैसे कार्य करता है और यह इस संगठन में कितने सदस्य हैं और गांवों की कौन कौन सी ऐसी समस्याएं होती हैं जहां पर सरकार का ध्यान नहीं जाता है, तो ये लोग वहां जाकर सरकार से राय सुझाव करते हैं और उन सारी चीजों का निदान हो पाता है। तो जागृति जी, आशा करते हैं कि सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagthara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: मारू नाम गिल्ली है ने मु मुन्नी नी मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल थे क्या आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही थी, तो मु हमजी के ने पानी नी तर लागी रही है, तो मु दूड़ी ने बा कने गई ने कीधु कि बाबा मुन्नी ने तर लागी है तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे। बाए हफ्तिंग ना कही दीदु ने मने कीधु कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नो दूध स पिएगा, ने अगर आपड़े मुन्नी ने कहीं भी खवड़ावंगा तो इन्हें दस्त लागी जागा। तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दीदु कि 100 महीना हुदी तने केवल माँ नो दूध स पीवू है।
0: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेशर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जी हां साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान जो है उसकी शुरुआत आज से हो रही है, और आज कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे कि नया जीवन नई शुरुआत हम कैसे करें, क्योंकि दोस्तों जीवन में हर दिन हमारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। हर सुबह जब सूरज उगता है ना साथियों, तो हमें एक ऐसा संदेश देता है कि चाहे बीता हुआ दिन कैसा भी रहा हो, आज फिर से शुरुआत करने का मौका हमारे सामने है। आज कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हर नया दिन हमारे जीवन में उम्मीद, ऊर्जा और बदलाव का अवसर लेकर आता है। तो कार्यक्रम में बातें हमारी आपसे इस विषय पर जरूर होंगी, लेकिन शुरुआत के कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला यह गीत। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी हमारे कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। साथियों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी असफलता, परेशानी या निराशा के कारण खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। कभी कोई काम ठीक से नहीं हो पाता, कभी मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिलता, तो कभी हालात ऐसे बन जाते हैं ना साथियों कि मन उदास हो जाता है। लेकिन प्रकृति हमें हर दिन एक सुंदर संदेश देती है। जी हाँ, हर सुबह का सूरज हमें यह याद दिलाता है कि अंधेरी रात के बाद हमेशा नई सुबह आती है। साथियों, नई सुबह हमें यह अवसर देती है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, अपने अनुभवों को समझें और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ें। अब यहीं बात करें कि जीवन में नई शुरुआत का क्या महत्व है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है श्रोता साथियों कि हम बीते हुए समय की नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी न होने दें। अगर हम हर समय पुरानी गलतियों को या असफलताओं को याद करते रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जब हम यह सोचते हैं कि आज का दिन मेरे लिए एक नई शुरुआत है, तो हमारा मन अपने आप उत्साह और ऊर्जा से भर जाता है। नई शुरुआत का मतलब है दोस्तों, नई सोच को अपनाना, नए लक्ष्य तय करना और खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करना। क्योंकि जीवन में अधिकतर हमारे साथ यही होता है कि हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो हम पुरानी बातों को पहले सोचने लगते हैं कि पहले जब हमने ये किया था तो ये हुआ था हमारे साथ, फिर ऐसे हुआ। लेकिन साथियों, उन सारी चीजों को हमें भूल जाना है, क्योंकि तब का समय क्या था और अब जब हम नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तब समय में क्या बदलाव आया है। इन सारी चीजों पर विचार करके सकारात्मक सोच को अपनाते हुए हमें जीवन में नई शुरुआत के महत्व को समझना होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जीवन का यही दस्तूर है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, और जब उतार चढ़ाव आते हैं और उन सारी चीजों को लेकर हम परेशान रहते हैं, हम उन्हीं में गुम रहते हैं, तो हम जीवन में कभी भी उन सारी चीजों से बाहर नहीं निकल सकते। हमारे जीवन की नई शुरुआत हम नहीं कर सकते। इसलिए हमें नकारात्मक सोच को, नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमें हमारे जीवन की नई शुरुआत करनी है। खासकर ये बातें हमारे युवा साथियों के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आज के युवाओं के सामने कई चुनौतियां हैं। पढ़ाई, करियर, प्रतियोगिता, समाज की अपेक्षाएं, इन सब के बीच कई बार ऐसा लगता है ना साथियों कि रास्ता बहुत कठिन हो गया है। लेकिन युवाओं को यह समझना होगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है। अगर आज कुछ गलत हो गया है दोस्तों, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कल भी वैसा ही होगा। हर नया दिन हमें एक और मौका देता है कि हम अपने सपनों की ओर फिर से कदम बढ़ाएं। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने सपनों की ओर निरंतर प्रयास करते रहें। धैर्य और साहस के माध्यम से हम उसे अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि बातें कार्यक्रम में हमारी बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी मैं बातें आपसे अवश्य इस विषय को लेकर करती रहूंगी। लेकिन कार्यक्रम का दस्तूर है कि हम बीच बीच में मनोरंजन के माध्यम से हमारे मन को शांत करते हैं और ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो क्यों ना एक और प्यारा सा गीत मैं आप सभी को सुनवा दूं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी दोस्त अंजलि के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि किस तरीके से हमें हमारे जीवन में नई शुरुआत के महत्व को समझना है, क्योंकि नया दिन हमारे लिए बहुत खास हो सकता है अगर हम चाहें तो। और जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि किस तरीके से युवाओं के सामने इन सारी चीजों को लेकर बहुत चुनौतियां आती हैं, यही बात करें, हमारी छोटी छोटी आदतें जो होती है ना श्रोता साथियों, वो हमारे दिन को नया बनाने में मदद कर सकती हैं। वो कैसे कर सकती हैं, इसको मैं आपको बताऊं। तो अगर हम चाहते हैं कि हर दिन हमारे जीवन में नई शुरुआत लेकर आए, तो हमें अपनी दिनचर्या में कुछ अच्छी आदतों को शामिल करना होगा। यानी कि सबसे पहला कार्य ही हमें ये करना है कि सुबह की शुरुआत हम सकारात्मक विचारों से करें। अक्सर दोस्तों, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें बोलते हैं कि सुबह उठते ही भगवान का स्मरण करो और भगवान से धन्यवाद कहो कि भगवान ने हमें ये सुबह दिखाई है और हमारा जो दिन है उसकी शुरुआत अच्छे से हो और अंत भी अच्छे से हो। और ये बातें अक्सर जब बड़ों के द्वारा हमें बताई जाती है तो हमें ऐसा लगता है ये क्या ऐसी बातें करते रहते हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों कि उनके जो विचार हैं, उनकी जो बातें हैं, उनके कहे गए जो अनुभव हैं, अगर उन्हें हम जीवन में अपना लेते हैं तो हमारा जो जीवन है वो बहुत अच्छा बन सकता है। सकारात्मक विचार अपनाने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें खुद से कहना है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, कि आज का दिन मेरे लिए अच्छा होगा। दूसरा, हमारा जो लक्ष्य हमने तय कर रखा है उसे हमें ध्यान में रखना है। अक्सर हमारे हाथों से ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है श्रोता साथियों कि हम हमारे दिन की शुरुआत लक्ष्य से नहीं करते। हमें ये लगता है कि जैसे दिन शुरू हो रहा है, जो काम हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा हो तो भी ठीक है। लेकिन अगर जब हम हमारे दिन की शुरुआत हमारे लक्ष्य के साथ करते हैं, यानी कि इस समय हमें ये कार्य करना है और इस समय ये कार्य करना है, इन सारी चीजों की रूपरेखा अगर हम एक दिन पहले बनाकर रख लेते हैं तो हमारे जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसके लिए हमें समय मिल सकता है। और जब हम छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसी के साथ हमें अपने जीवन की अच्छी बातों के लिए आभार व्यक्त करना है। जब हम यह महसूस करते हैं श्रोता साथियों कि हमारे पास कितना कुछ अच्छा है, तो मन में सकारात्मकता बढ़ने लगती है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे मन में नकारात्मक विचार बहुत ज्यादा हावी होते हैं। हम अक्सर खुद को कोसने लगते हैं, हमारे पास जो होता है उसको लेकर भी हम ये सोचते हैं, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास ये होता। श्रोता साथियों, आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारी इच्छाओं का अंत है ही नहीं। अगर हमारे पास सब कुछ होगा फिर भी हमें ऐसा लगेगा कि उस व्यक्ति के पास जो है काश वो मेरे पास होता। इसलिए हमारे पास जितना कुछ भी है, जो भी है या नहीं है, हमें उसमें खुश रहने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि इतिहास में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई बार नई शुरुआत की है, कई बार असफल हुए हैं, कई बार गिर गए, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को संभाला और फिर आगे बढ़े। उनकी सफलता का रहस्य भी यही था कि उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्होंने हमेशा एक ही बात को माना कि हर नया दिन एक नई संभावना लेकर आता है। अगर हम इसी बात को, इसी विचार को अपने मन में जमा लेते हैं श्रोता साथियों, तो हम हमारे जीवन की नई दिशा तय कर सकते हैं। तो साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम हर सुबह यह सोचें कि आज का दिन भी मुश्किलों से भरा होगा, तो हमारा मन पहले ही हार मान लेता है। लेकिन अगर हम यह सोचे श्रोता साथियों कि आज का दिन मेरे लिए नई उम्मीद लेकर आएगा, तो वही सोच हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। जीवन हमें हर दिन एक खाली पन्ना देता है, उस पन्ने पर क्या लिखना है ये हमारे हाथों में ही होता है दोस्तों। अगर हम उस पन्ने में निराशा और डर लिखेंगे तो जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर हम उस पर उम्मीद, मेहनत, सकारात्मक सोच लिखेंगे तो वही पन्ना हमारी सफलता की कहानी बन सकता है। तो साथियों, आज के कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि हर नया दिन नई शुरुआत है। बीते समय की गलतियों से सीखिए, लेकिन उन्हें अपने भविष्य पर बोझ मत बनने दीजिए। हर सुबह खुद से यही कहिए श्रोता साथियों कि आज का दिन मेरे सपनों को सच करने की दिशा में एक नया कदम है। यकीन मानिए कि जब भी सूरज उगता है वह हमें यही याद दिलाता है कि जीवन फिर से शुरू करने का मौका हमेशा मौजूद है।
इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज की हमारी बातों को मैं यही विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि कार्यक्रम में हमारी आपसे जो बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और प्यारे से गीत के साथ में।

बनने के लिए ऊंचा होना जरूरी नहीं।

साथियों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से मैं विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है, हर नया दिन एक नई शुरुआत को लेकर, वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vaagdhara.org, radio@vaagdhara.org। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए प्यारे से विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने दोस्त अंजलि पारेशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।